सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
3: कूल सॉन्ग।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग आरजे तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड it today.

0: Tanisha.
1: What a beautiful track, Prateek Kuhar and Ankit Tiwari ke vyas me only on Radio Olive 106.3 FM. Tanisha Agi ji, aapki saath bindas mornings lekar a very good morning, meri jaan. Wednesday ka din, September 16th. Aise weekend khidki ke bahar uchhale maar rahe hain. To ye thought ke saath hi main khush ho gayi hoon yaar. Well, कैसे हैं आप? How was your day yesterday? और फिलहाल क्या कर रहे हैं? काम के लिए already निकल गए हैं, ready हो रहे हैं, अभी उठे हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने वाले हैं. What's going on? सब जानना चाहती हूँ. 3311-1063 पर प्यार से good morning भेज दो अपने नाम के साथ. Full track Kabir Singh say and then this one I was crazy about this

0: So I watch a lot of Pakistani dramas, you know, because initially तो मैंने इसलिए देखना शुरू किया था कि बहुत छोटे होते हैं जो इंडियन ड्रामाज होते हैं उनकी तरह स्ट्रेच नहीं किया जाता उन्हें. लेकिन नाउ दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड अडॉप्टिंग द सेम मेथड विच इंडियन सोप यूज टू डू कि बीच में इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर देते हैं, एक छोटी सी चीज़ को राई का पहाड़ बना देते हैं बेसिकली, एंड देन वो थोड़ा बोरिंग होने लग जाता है. लेकिन स्टिल आई एंजॉय वॉचिंग दैट. आई थिंक वो जो जिस लहजे में बात करते हैं ना, वो बड़ा बड़ा ही सुंदर साउंड करता है वो गानों को.
1: क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है.
0: बिल्कुल एंजॉय करो,

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड it today.

0: Tanisha.
1: Vishal Mishra ki awaaz mein kaise hua from the movie Kabir Singh. This one's dedicated to all of you. You know, जो मुझे इतने प्यारे प्यारे गुड मॉर्निंग मैसेजेस करते हैं. Obviously आप बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हो यार विद टाइम. तनिषा के साथ यहाँ रेडियो 106.3 FM पर बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. एंड नाजनी जी का मैसेज आया है, एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव गॉड गिव्स अस न्यू मॉर्निंग्स एवरी डे, new do-overs every day, new chances to move forward every day, new opportunities to make reparations, to seek restoration, to rebuild what was broken every single day. Indeed, every new day is an opportunity. It all depends on how you grab it. And Shashikant Patil ji ka bhi message hai. Good morning. We can save money to spend later, but we cannot save even a single day to live life later. True. आई हैड एन एपिफनी टुडे, उसके बारे में मैं कुछ देर में बात करूंगी. एंड वो इस थॉट से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है. अबरार जी का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग. मोहम्मद राजू जी का गुड मॉर्निंग आया है. संतु जी का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग, मे योर डे ब्रिंग यू जॉय एंड दैट गॉड इज़ विद यू ऑलवेज, विशिंग यू अ डे फिल्ड विद पॉजिटिविटी एंड इंस्पिरेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल, जियो बिंदास. जुल्फी जी का भी मैसेज आया है, show respect to people even when they don't deserve it. Respect is a reflection of your character, not theirs. Good morning. That's a really good thought, but I beg to differ on that. I at times feel, obviously, we should be respectful to everybody, because if you want respect, you have to give respect. And that goes parallelly. Agar koi aapko respect nahi de raha hai, and then in turn, you're just being kind and polite to them and they are just taking advantage of it. That's not okay also. Do not take that. No, no, no, Meri Jan. Sending cool song of the hour for you. Stay tuned on Jio Bindas.
0: Awesome.
1: Radio Olive par. Aane wala gana. Cool song of the hour.
2: Song of the hour. Song.
3: Kya baat hai, sir? Kya baat hai? Ye baat hai.
0: Awesome.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: Ready?
2: Ready!
1: To learn!
2: Yes!
1: To play!
2: Absolutely!
1: To grow!
2: With Maserati!
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
2: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड it today.

की आवाज में क्या मुझे प्यार है. ब्यूटीफुल ट्रैक ऑन रेडियो 106.3 एफएम. तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. आज जब मैं सुबह ऑफिस की तरफ आ रही थी और मैं गाड़ी में बैठी थी, एंड आई वाज जस्ट यू नो स्टेयरिंग इन द एट द स्काई, सन को देख रही हूँ, एंड देन सडनली अ थॉट केम टू माई माइंड कि बिकॉज आई वॉज नॉट यूजिंग माई फोन एट दैट टाइम. तो मुझे हो रहा था कि यार मैं खाली क्यों बैठी हूँ, लेट मी यूज माई फोन, आई विल स्टार्ट प्लेइंग गेम ऑन माई फोन इफ आई एम फ्री, राइट. सो उस टाइम पर मेरा मन नहीं कर रहा था, एंड आई वॉज लाइक यार अभी जाके काम करते हैं आराम से, यू नो, क्यों फोन में लगना है एंड ऑल दैट. एंड आई वॉज जस्ट लॉस्ट इन माई थाट्स, एंड देन सडनली मुझे ऐसे हुआ कि चलो फोन खोल के पुराने पिक्चर्स देखते हैं, इफ नॉट गेम्स तो ये कर लेते हैं, ये ऑल्टरनेटिव ढूंढा मैंने. एंड व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग एट द पिक्चर्स, सडनली अ थॉट की मैंने फटाफट से पिक्चर्स बंद किए, एंड देन आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट सिटिंग देयर स्टेयरिंग इन द एबिस कि यार व्हाई एम आई ऑलवेज लिविंग इन द पास्ट. पुरानी पिक्चर्स देखिए, आई ऑलवेज फील यार क्या बढ़िया लग रही थी उस टाइम पे मैं, हेल्थ कितनी बेहतर थी मेरी, और यू नो बाल कितने अच्छे थे यार, मैं वहाँ पे थी, आई वाज हैविंग सो मच फन. या तो मैं ये कर रही होती हूँ कि पुरानी पिक्चर्स देख के उनके बारे में याद कर रही होती हूँ कि वो बढ़िया टाइम था यार, सही था यार, वो मस्त था, क्या एनर्जी थी उस टाइम पे, या फिर ये सोच रही थी कि यार आगे क्या होगा, क्या करूँगी कल मैं, एंड लाइक व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर मी. एंड देन आई वॉज थिंकिंग कि भाई मैं प्रेजेंट में कब जीऊँगी अगर मैं यही सोचती रह जाऊँगी तो. एंड इवेंचुअली व्हेन आई गो इनटू द फ्यूचर लाइक यू नो अ ईयर डाउन द लाइन, मैं फिर से पीछे मुड़ के यही देख रही हूँगी कि यार क्या बढ़िया टाइम था यार ये राइट नाउ, जिसको मैं जी ही नहीं रही हूँ. सो दैट इज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ माइंड आई थिंक, क्योंकि हम ना इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपने पुराने वर्जन से और नया वर्जन कैसा होगा इन फ्यूचर उससे, कि जो प्रेजेंट वर्जन है, जो आसपास अभी ब्लेसिंग्स हैं, जो चीज़ें मेरे पास अभी है, ये कमाल की जो जॉब मैं आपसे यहाँ पे कर रही हूँ, आपसे बातें करने को मुझे रोज़ मिल रहा है, इतने कमाल मैं गाने सुन रही हूँ हर रोज़, इतने बढ़िया लोगों से मिलती हूँ मैं हर रोज़, मैं इन चीज़ों को अप्रिशिएट ही नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं पीछे फंसी हुई हूँ, या तो मैं आगे के लिए सोचती रहती हूँ. सो दैट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, एंड आई एम गोना ट्राई नॉट टू डू दैट एनी मोर कॉन्शियसली, क्योंकि अब जब ये रियलाइजेशन हुआ है तो वो मेरे दिमाग में कॉन्शियसली बैठा रहेगा, इट इज़ नॉट इन द बैक ऑफ माई माइंड. सो आई एम गोना ट्राई एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, एंड या दैट वॉज जस्ट द एपिफनी आई हैड दिस मॉर्निंग. आई वॉज लाइक लेट मी शेयर इट विद यू बिकॉज आई नो All of us, not all, to most of us, do this. या तो हम past में ही जीते रहते हैं, या तो हम future के बारे में ही सोचते रहते हैं, और present की परवाह किसी को रहती ही नहीं है. Ash King और सुनिधि चौहान की आवाज में TMO, the Marudam से. Stay tuned, Andrea Bindas.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: Biryani belly, bye bye. Flabs instead of abs, not for long. Falcon Fitness is landing in Al Rayyan, September 18th, 7 p.m. and bringing the star power, Jay Surya, Esther Anil, Shamna Kasim, producers C.R. Salim and Rajesh Krishna. Al Rayyan ready to get ribbed. Falcon Fitness, spread your wings.
2: Malabar Gold and Diamonds Bindaas Morning.
3: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में.
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर. नो क्यूज, नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस. डाउनलोड today.

0: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
0: 106.3 FM रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: Tanisha.
1: Tanisha. I think this track is the only thing which came out, you know, good out of Splitsvilla. Yeah. Well, ये गाना हम वेदर को डेडिकेट कर सकते हैं ना, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस तो आया है. देखो थोड़ा सा, जितना स्ट्रेच में थोड़ा पे कर रही हूँ ना, उतना ही आया है. राइट नाउ द टेम्परेचर इज 33 डिग्रीज एंड इट फील्स लाइक 41 डिग्रीज. देयर इज नो विंड, तो भाई क्रेजी होने वाला है. एंड हाईएस्ट टेम्परेचर विल बी 41 टुडे एंड लोएस्ट विल बी 32 बाय नाइट. बट या जब मैं सुबह बाहर निकली तो इतनी ज़्यादा वार्म वाली एयर नहीं फील हो रही थी, हॉट एयर नहीं फील हो रही थी. बट या इट वॉज स्टिल गर्म ही, ऐसे ठंडा नहीं हो गया है. पर हाँ, एक होप दे दिया इसने हमें कि भाई मैं हो रहा हूँ शांत, थोड़ा सा और सब्र करो, इतना बर्दाश्त किया है, थोड़ा सा और कर लो, कर लेंगे यार. आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइज कि स्टे हाइड्रेटेड, ठीक है. एंड लाइट खाना ही खाइए अभी भी, और साथ में ऑर्डर वगैरह कर रहे हैं ना तो उसको ज़्यादा देर तक रखे ना, उसको फटाफट से खा ले. या फिर ये ना सोचे कि अच्छा अभी बच गया है तो कल भी खा लेंगे. नो दैट्स नॉट ओके, प्लीज़ डोंट डू दैट. अपनी सेहत का ख्याल हमें खुद रखना पड़ेगा. वट एवर वी आर फीडिंग आवर बॉडी वो आगे जाके रिफ्लेक्ट करता है. आपको इमीडिएटली भले ही ना दिखे कुछ भी, बट वो आगे जाके रिफ्लेक्ट करेगा. सो बी वेरी वेरी कॉन्शियस एंड केयरफुल अबाउट इट. आप स्वस्थ रहेंगे तो ही सब मस्त लगेगा ना यार. जब हेल्थ ठीक नहीं होती है ना, तो चाहे हमारे पास दुनिया की सारी चीज़ें क्यों ना हो, हम कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाते. वी डोंट फील गुड अबाउट इट. सो स्टे हेल्दी, ठीक है, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.

0: टास मॉर्निंग, टास मॉर्निंग आज तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड it today.

0: तनिषा
1: नवजोत आहुजा की आवाज में एक खत। व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक, क्या सुंदर लिखा है इस इंसान ने और उतनी ही सुंदर उनकी आवाज। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 11.6.3 FM, तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं। अबर

0: दिल धड़कने दो से ये कमाल गाना, एंड देन दिस वन, आई लव दिस ट्रैक. और ओम शांति ओम से दिस ब्यूटी.
1: आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं.
0: और भी बहुत सारे गाने बहुत खूबसूरत खूबसूरत लाइंड अप हैं इस घंटे में आपके लिए. फिलहाल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेम जैम्स. मेरी जैम ओके. सो पहले ही मैं बता देती हूँ ऑल द पीपल हु आर फ्रॉम हैदराबाद लिसनिंग टू मी राइट नाउ. हैदराबाद इज एन अमेजिंग प्लेस. ठीक है, नो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उससे. इट्स जस्ट अ लेम क्वेश्चन आई एम गोना आस्क. सो कोई भी ऑफेंड नहीं होगा. ठीक है, पहले ही बता दे रही हूँ मैं. सो द क्वेश्चन लेम जैम्स का आज का इज कि सपोजिडली ओके, अगर हैदराबाद एक अच्छी सिटी होती तो उसका नाम क्या होता. हैदराबाद अगर एक अच्छी सिटी होती तो उसका नाम क्या होता ये बताइए 3311063 पर, और यू कैन कॉल 4444106 पर. हैदराबाद अगर एक अच्छी सिटी होती तो उसका नाम क्या होता. उसकी स्पेलिंग से सोचो, जरा आंसर मिल जाएगा. स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू?
2: अरे रानी का तो पता नहीं पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं यस दोहा गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा
3: सेप्टेम्बर 24th एट हॉलीडे इन दोहा रेट्रो वाइब्स प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज
2: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट्स जी बुक करें धरोहर मिस मत करना
4: हेलो लिसनर मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड it today.

0: दिल धड़कने दो मूवी से पहली बार ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम दरीशा आपके साथ में 10 मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर So, मेरा आज का सवाल लेम जेम्स का था कि सपोजिडली हैदराबाद एक बहुत अच्छी सिटी है तो उसका नाम क्या होता इन पैरेलल यूनिवर्स आई वेरी क्लियरली मेंशन्ड कि हैदराबाद ऑलरेडी एक बहुत कमाल की जगह है मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ बट मुझे पता था ये होगा I've got messages over here. How can you talk about Hyderabad like that? I am not saying anything. It's just a lame jams question. Chill karo, dosto. Yahan pe joke chal raha hai. So, I've got answers over here, by the way. And jo is joke ko joke ki tarah le pa rahe the, unhone diya hai mujhe yahan jawab. Mujhe Sunita ji ka message aaya hai. I've got message from Paki. There is Watsal, Rajib, and Adil. There is, again, unka naam isme... Arabic में लिखा है तो मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ इनोसेंट का मैसेज आया है अश का मैसेज आया है मुझे एंड जहान का मैसेज आया है एंड यस द करेक्ट आंसर इज हैदराबाद When I so we have one of our colleagues from Hyderabad and जब मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा था ना he was like क्यों करती हो तनिषा तुम ये why do you enjoy doing this asking such lame questions And like that's just the fun of life, you know. मतलब अपने अंदर का जो बच्चा है उसको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है लाइफ में तो ऐसे स्टूपिड सिली सवाल पूछ लेती हूँ और फिर आप भी अनॉय होके हंसते हैं और मुझे भी हंसी आ जाती है तो ठीक है ना यार दोनों के लिए विन विन है खराब क्या है इसमें बताओ मुझे है सेंडिंग जबरदस्त हिट योर वे स्टे ट्यून एंड जियो बिंदास
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है

0: Olive 106.3 FM Gio Bendaz. Lulu Mega Deals are back, and this time it's all about bigger deals, better prices, and smarter shopping.
1: From 16 to 19 September, grab special offers and brand new prices on selected items at Lulu.
0: 4 days, mega deals, more savings.
1: So get your shopping list ready, because this time at Lulu, your shopping is going mega while your spending goes down.
0: Lulu Mega Deals 2026. Spend less, save more.
2: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है, लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर। ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार। ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026। द कतर टॉक्स 2026. Communicate, connect and conquer.
3: यू घर का क्या हाल बना रखा है? तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते, कहाँ है सब?
4: कारपेट के नीचे, सीलिंग के जालों में और दीवार पर।
3: क्या कॉकरोचेस, मकड़ी, धूल और जाले? अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर।
4: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज, प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ, और हाँ, मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है।
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
6: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो, बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
7: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड it today.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Biryani belly, bye bye. Flabs instead of abs, not for long. Falcon Fitness is landing in Al Rayyan, September 18th, 7 PM, and bringing the star power: Jay Surya, Esther Anil, Shamna Kasim, producers C.R. Salim and Rajesh Krishna. Al Rayyan, ready to get ribbed. Falcon Fitness, spread your wings.
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो, बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
4: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Danisha.
1: What a beautiful track it is, Javed Zindagi. You're listening to Radio 11.6.3 FM. Danisha, you are with Bindas Morning Show. And brother, Qatar is adding feathers in his cap. मतलब इसकी जो पोजीशनिंग हो रही है दैट इज कमेंडेबल. सो नाउ कतर हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ स्कूल्स व्हिच टर्न्स स्कूल किड्स इनटू फ्यूचर सीईओस. द काइंड ऑफ फैसिलिटीज दे प्रोवाइड, द काइंड ऑफ एजुकेशन दे आर प्रोवाइडिंग, उस लिस्ट में कतर ने टॉप किया एंड दैट इज रियली अमेजिंग. एंड आई फील दैट इज वेरी मच ट्रू बिकॉज द काइंड ऑफ एजुकेशन वी आर गेटिंग ओवर हियर, द काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स दे आर ब्रिंगिंग to, you know, make kids ready to create a bright future for themselves and the country is commendable. So, ये जो index है, ये देखता है कि एक school किस तरह से creativity को build करता है, confidence को build करता है, कितने initiatives लेकर आता है, risk assessment and opportunity spotting from an early age. जितनी छोटी age से आप you know, figure out कर लोगे कि you know, this kid is good in that, और आप उनको थोड़ा सा उस direction में nudge देंगे, they will excel at that. Yes, that's what they want, right? Thoda sa direction chahiye hota hai. Baki, they also know what they want to do in life. And that is such a beautiful thing ki wo freedom hai yahan pe aur schools se hi mil rahi hai, wo education ke through hi mil rahi hai. So it is really amazing and well deserved, right? On that note, sending beautiful track. Rekha Bhardwaj aur Raghav ki awaaz mein Musafir Cafe se, hum tere hote to. Stay tuned and Jio Bindas.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: बिंदास रेडी टू लर्न टू प्ले टू ग्रो
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
3: Shackman की power packed range, heavy trucks, tippers, trailers और boom trucks. दमदार performance और भरोसा सिर्फ Carmel के साथ. Visit Carmel Group now.
4: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker 2-3 minute का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026 द कतार टॉक्स 2026. Communicate, connect and conquer.

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड today.

0: vorbit ce Bavra să mână Bavra să mână You are listening to Radio Olive 106.3 FM Gio Bindas
1: Lulu Mega Deals are back and this time it's all about bigger deals, better prices and smarter shopping.
2: From 16 to 19 September, grab special offers and brand new prices on selected items at Lulu.
1: 4 days, mega deals, more savings.
2: So get your shopping list ready because this time at Lulu, your shopping is going mega while your spending goes down.
1: Lulu Mega Deals 2026. Spend less, save more.
3: Ready?
4: Ready!
3: To learn!
4: Yes!
3: To play!
4: Absolutely!
3: To grow!
4: With Maserati!
5: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
4: मिल्क चीज योगर्ट लेबनी एग्स
5: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
6: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम मैं हूं जैकी श्रॉफ
7: रेडियो
0: 106.3 जियो बिंदास ओलिव रेडियो नेटवर्क Qatar's number one Asian radio network.
8: Radio Olive, our number one. Abu Hoggy, Abu Hoggy. Bindas Morning.
9: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
10: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में
11: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड it today.

0: कितना सुंदर है ना ये वाला तो। Sending all these tracks your way in this hour. Stay tuned, Andrew Vindas. Cool
1: song. Radio Olive par. Aane wala gana. Cool song of the hour.
2: क्या बात है सर? क्या पर ये बात है? Cool song.

0: America number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Bindas. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our sixth branch is now open at Al Waqra. For more details, call 500-56123.
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में.
0: कमर्शियल बैंक. योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर. नो क्यूज, नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस. डाउनलोड it today.

कबीर जरा से आया तेरे दर पर दीवाना, खूबसूरत यार, बहुत ही डिवाइन। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर। एंड हिंदी दिवस पे वी वर टॉकिंग अबाउट मुहावराज, राइट? सो आई वेंट अ बिट डीपर इनटू दैट एंड मैं फिर बहुत सारे ऐसे मुहावरों के बारे में पढ़ रही थी, तो मेरी नज़र पड़ी एक मुहावरे पे जो कि बहुत यूज़ किया जाता है और किसी को, आई डोंट नो किसी को पता है या नहीं, बट मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता है कि हम गलत बोलते हैं वो। सो दैट मुहावरा, दैट idiom इज अकल बड़ी या भैंस। जी, अकल बड़ी या भैंस। एंड यू वुड रादर थिंक कि भाई भैंस और अकल का क्या लेना देना है, ये कैसा कंपेरिजन हो रहा है, इसमें हम किसको बड़ा बताएं। और बात यह है कि गलत है, हम गलत बोलते हैं उस idiom को। इट इज़ एक्चुअली अकल बड़ी या वयस। वयस मीनिंग एज। जी हाँ, सो द मुहावरा इज बेसिकली कि यू नो किसी की एज से आप उनकी मच्योरिटी के बारे में नहीं जान सकते, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी विजडम भी मैटर करती है। एंड आई वॉज बॉफल्ड, आई वॉज लाइक वॉट, हम इस लूप में फंसे हुए थे कि अकल बड़ी या भैंस, जबकि वो तो भैंस का कुछ लेना देना भी नहीं था उसके साथ। सो या आई गॉट टू नो दैट नाउ। आपको भी आज पता चल गया, अगर नहीं पता था तो ऑलरेडी पता था तो ज़रूर मुझे बताइएगा 3311 1063 पर। लौट कर आती हूँ एंड वी हैव टू टॉक अबाउट अमिगडाला हाइजैक, क्या है वो जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो।

0: क्यों घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
1: कारपेट के नीचे सीलिंग के जालों में और दीवार पर
0: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर
1: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
2: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए द कतर टॉक्स इज बैक विद इट्स 21st एडिशन ऑन द हंट फॉर कतर्स नेक्स्ट चैंपियन स्पीकर 2-3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd सितंबर तक ऑन www.thekatartalks.com पर ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतर ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026 द कतर टॉक्स 2026. Communicate, connect and conquer.
3: सुनिए हर सुबह 6 से 10 हर जिस्तन निशा को बिंदास मॉर्निंग में
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
5: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में
6: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million reals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड it today.

मिर्जापुर द मूवी से मधु शर्मा की आवाज में सांसों की माला पे ब्यूटीफुल रेंडिशन ओनली ऑन रेंडी रेडियो ऑफ रेडियो ऑलिव. ओह माय गॉड, सो आई एम लॉस्ट इन द ट्रैक एंड द थिंग आई एम गोना टॉक अबाउट. सो आज वैकी विजडम में एक बहुत ही अमेजिंग चीज के बारे में बात करने वाले हैं. जी, वी आर गोना टॉक अबाउट अमिगडाला हाइजैक. कई बार ऐसा होता है ना कि यू लेटर ऑन रिग्रेट आफ्टर रिएक्टिंग टू सर्टेन थिंग्स. किसी ने कुछ बोल दिया और बहुत जल्दी ऐसे गुस्सा आ गया, यू रिएक्टेड, यू सेड समथिंग, और फिर बाद में लगता है कि यार इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना मैंने रिएक्शन दे दिया है, इसकी जरूरत नहीं थी. सो बेसिकली वो जो इंस्टेंट रिएक्शन निकलता है ना आउट ऑफ एंगर, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, दैट इज अमिगडाला हाइजैक. और ये जो टर्म है ये कॉइन किया था डेविड गोल्डमैन ने. सो व्हाट इज अमिगडाला हाइजैक? अमिगडाला इज बेसिकली प्रिमिटिव पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, रेप्टिलियन ब्रेन भी बोलते हैं उसको, जो कि हमें फियर, स्ट्रेस, यू नो, एंजाइटी, इस सब से सेव करता है. सो जब भी आप कोई भी ऐसे फियरफुल सिचुएशन में होते हैं, सो यू थिंक फ्रॉम योर प्रिमिटिव ब्रेन, ठीक है, एंड दैट इज अमिगडाला. एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है उसको मौका नहीं मिलता है क्योंकि अमिगडाला बहुत फटाफट से रिएक्ट कर जाता है बिकॉज यू हैव टू सेफ गार्ड योर सेल्फ, राइट? बट द प्रॉब्लम इज कि हमारे ब्रेन को ना एक लायन अटैक और एक पैसिव अग्रेसिव ईमेल में कोई डिफरेंस नहीं पता है. सो वो दोनों सिचुएशन को सेम तरीके से मेजर करता है और रिएक्ट कर देता है. नाउ इफ समथिंग दैट ग्रेव विच इज, यू नो, विच कैन हार्म योर लाइफ, वैसा हो रहा है और उसमें आपको इंस्टेंटली रिएक्ट करने की जरूरत है, बट एक मेल आ रहा है जो कि आपको लग रहा है कि पैसिव अग्रेसिव है बट इट इज नॉट, तो उसमें रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है. दैट इज वाई दे से कि जब भी कुछ रिएक्शन निकलने वाला है गुस्से में तो 6 सेकंड का पॉज लो और उसके बाद सोचो एंड देन रिएक्ट करो, बिकॉज इन दैट 6 सेकंड्स ना अमिगडाला शांत हो जाता है और जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो कि हमारी सूझबूझ का काम करता है वो एक्टिव हो जाता है. एंड देन यू रियलाइज कि भाई इतनी बड़ी बात नहीं है कि मैं इस पे अपना रिएक्शन दूं, सो जस्ट लेट इट गो. काफी सारे पंगों से आप लाइफ में ना सॉर्ट हो जाओगे, बच जाओगे अगर ये चीज कर ली. दैट इज आई दे कीप प्रेशराइजिंग ऑन कि यू नो 6 सेकंड का टाइम लो, 6 सेकंड का टाइम लो, डू नॉट रिएक्ट इमीडिएटली, क्योंकि गुस्से में लिए हुए डिसीजन और शब्द जो निकल जाते हैं वो हमें बाद में बहुत रिग्रेट करवाते हैं. So yeah, that is the reason. Sending fresh song of the hour for you. Mile jo suku khosla rugu ki awaaz mein sun rahi hai Radio 106.3 FM. Chiyo, bindaas meri jaan.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Biryani belly, bye bye. Flabs instead of abs, not for long. Falcon Fitness is landing in Al Rayyan, September 18th, 7 PM, and bringing the star power, Jay Surya, Esther Anil, Shamna Kasim, producers CR Saleem and Rajesh Krishna. Al Rayyan, ready to get ribbed. Falcon Fitness, spread your wings.
2: Shackman ki power packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa. Sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.
3: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर। ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार। ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026। द कतर टॉक्स 2026. Communicate, connect and conquer.

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग अर्जुन तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड it today.

0: Denisha. Denisha. Denisha.
1: फैंटम मूवी से आपने ये गाना सुना अफगान जलेबी ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम. दनीशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर.
2: ये है चलती फिरती डिक्शनरी.
1: सो आज का जो वर्ड है ये कई बार हो जाता है, वी डोंट वांट दिस टू हैपन बट हो जाता है. दिमाग में चीजें चल रही होती है, प्रॉपर एकदम यू नो डीप स्लीप में हम नहीं जा पाते एंड वी कीप यू नो टॉसिंग लेफ्ट एंड राइट throughout the night. Neend hoti hai halki halki but still you're not just feeling comfortable. Aur jab aap subah uthte hain to bahut tired mehsoos kar rahe hote hain, not because you did not sleep, because you kept tossing here and there the entire night. That feeling is called forvalod. Forvalod. forvalod. Forvalod. It is a 15th century term or it basically means this only, you know, feeling weary from tossing and turning all the night. Or uske liye pata hai like ye cheez na ho iske liye hame apne brain ko full puri tarike se raat ko na aise switch off kar dene ka hai. क्योंकि 50 टैब्स खोल के तो सो जाते हैं, फिर वो अनकॉन्शियसली चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, उलझुल सपने आते हैं एंड देन हमारी जो नींद है हम वो डीप स्लीप में जा ही नहीं पाते. तो इसीलिए थोड़ा सोचना कम कर दो मेरी जान. भेज रही हूँ बड़े कमाल के गाने, देखो जरा.

0: ऐसा नहीं होता, आपके चाहने से कुछ नहीं होता मेरी जान। हाँ जी, एंड अलोंग विद दैट ये भी आ रहा है। वो तो मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी तो आंखें खुलती ही नहीं है, टीनी टाइनी आईज हैं, सब बड़ा मजाक उड़ाते हैं।
1: दगाबाज रे है, दगाबाज रे तोरे नैना बड़े दगाबाज रे।
0: ये भी मुझ पे सूट नहीं करता। Well, अभी भेज रही हूँ बांधे जुल्फों पे ज़ीशान अली की आवाज में। आई वॉज गेट कीपिंग दिस ट्रैक ऑल्सो, जैसे मैंने रांझिया भी रखा हुआ था एंड ज़ीशान अली का एक गाना और था, आई एम नॉट रिकॉलिंग द नेम ऑफ दैट, मैं अभी याद करके आती हूँ, बट बांधे जुल्फों पे भी काफ़ी वक्त पहले सुन लिया था एंड आई इट वॉज इन माई प्ले लिस्ट एंड अब वीडियो आ गया, अब सब चला लेंगे इस गाने को, तो Here it is for you. Stay tuned and enjoy with us.

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: हेलो नमस्कार, मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ओलिव

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड it today.

0: न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलबार गोल्ड एंड डायमंड सफारी मॉल में।
1: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे।

0: Tanisha.
1: सुखविंदर सिंह की आवाज में अखियों से गल कर गई होली ऑन रेडियो 106.3 FM. तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. एंड आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू गाइस, इफ यू हैवंट सो फार, तो जाइए रेडियो ऑलिव को फॉलो कर लीजिए सोशल मीडिया पर. रेडियो ऑलिव .qs the handle फॉर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक और यूट्यूब, स्नैपचैट, टिकटॉक, वी आर एवरीवेयर. सो सब जगह पे फॉलो कर लो, ठीक है. एंड इन केस एनीबॉडी इज नॉट हियर इन द कंट्री और वो हमें सुनना चाहते हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं. आप खुद भी एक्चुअली डाउनलोड कर लीजिए रेडियो ऑलिव का ऐप, क्योंकि आपके बहुत काम आएगा. आप कहीं पर भी रेडियो ऑलिव सुन सकते हैं लाइव एंड यू कैन कनेक्ट विद अस एनी टाइम एनी वेयर. एकदम ईजी पीजी. ऑल्सो टू ऑल दी ऑफिसेज आउट देयर, लाइक इफ एनी HR और बॉस हमें सुन रहे हैं तो वी कैन ब्रिंग द ब्रेक फॉर योर एम्प्लॉयज फॉर 1 or 2 hours एंड बहुत सारा फन करेंगे साथ में. आपने बस हमें कनेक्ट करना है फॉर हैप्पीनेस लाउंज. 3311-1063 इज द नंबर, आप मैसेज कीजिए एंड वी विल ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क की टीम आपके ऑफिस आएगी फॉर हैप्पीनेस लाउंज. वील हैव लॉट्स ऑफ फन गेम्स, इंटरक्टिव सेशंस होंगे. दे विल फील री एनर्जाइज एंड रिफ्रेश यू नो, और उससे उनकी प्रोडक्टिविटी में काफी ज्यादा एडिशंस ही होंगे. Yes, so it's a win-win. Sundariya Radio Olive, Jio Bindas.

0: जैक मैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
0: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड today.

के लफ्ज़ कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

0: Tanisha.
1: Tare by Farrukh, what a beautiful track. Absolutely love it. Tanisha ke saath suna aapne Radio All of 106.3 FM par. Bindas Mornings chal rahe hai aap par aur waqt ho gaya mere jaane ka meri jaan. Milte hai kal subah 6 baje Thursday ka din. Dher sara fun, dher sara enthusiasm. क्योंकि वीकेंड यस सेलिब्रेशन तो बनता है तो कल सुबह 6 बजे से ही शुरू हो जाएंगे हम और आपको वीकेंड में जो ऐसे एंटर करवाएंगे वो एकदम एनर्जी के साथ होना चाहिए ना उसका पूरा ख्याल रखा जाता है यहाँ पे जी आपने बस अपना ख्याल रखना है इतना कर लो हमारे लिए और कोई भी बात हो जहन में जो शेयर करना चाहते हैं 3311106 इज द नंबर एनी टाइम यू कैन टॉक टू अस 4444106 इज द नंबर यू कैन कॉल ऑन और बात करने से बात बनती है ठीक है और इतना भर के अगर दिल में जिएंगे तो जिंदगी कैसे जी पाएंगे खाली करना जरूरी होता है तो हम यहाँ पे सिर्फ सुनाने के लिए नहीं सुनने के लिए भी है ठीक है अपना ख्याल रखना एंड हैव एन अमेजिंग डे टू योरसेल्फ सुनते रहिए रेडियो ऑलिव ट्रियो बिंदास मेरी जान

गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू. और शो का नाम है यस ऑफ कोर्स लाइफ मस्ट है. और आज की तारीख थोड़ी सी खास है, 16th September, वर्ल्ड ओजोन डे. अब ओजोन सुनते ही हमें स्कूल के साइंस क्लास याद आ जाती है. वो एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है, यूवी रेस से बचाती है, वगैरह वगैरह. लेकिन इसकी कहानी एक्चुअली में काफी सिनेमैटिक है. एक टाइम साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि अर्थ की ओजोन लेयर में बड़ा नुकसान हो रहा है. और फिर दुनिया ने, अलग अलग देशों ने मिलकर यहाँ पर एक प्रोटोकॉल बनाया 1987 में. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल एग्रीमेंट नहीं था, ये दुनिया के साथ मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक रेयर एग्जाम्पल स्टोरी है. सो कंट्रीज ने उन केमिकल्स को फेज आउट करने पर काम किया जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रही है. और आज साइंटिफिक असेसमेंट यही बताते हैं कि अगर इस टाइम पर ओजोन लेयर जो है वो धीरे धीरे रिकवरी की तरफ बढ़ रही है. मतलब हम अक्सर सुनते आए हैं कि इंसानों ने इन्वायरमेंट खराब कर दिया, लेकिन ओजोन की कहानी ये भी बताती है कि इंसान प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है तो कलेक्टिवली सॉल्यूशन भी बना सकता है. और शायद आज की सबसे अच्छी बात भी यही है कि हर बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई ड्रामेटिक इन्वेंशन नहीं होता. कभी कभी सॉल्यूशन होता है कंट्रीज का बैठना, रूल्स बनाना और फिर सालों तक उन रूल्स को फॉलो करना. सो आज वर्ल्ड ओजोन डे पर एक थॉट है आपके लिए. अगर दुनिया ओजोन लेयर के लिए मिलकर काम कर सकती है तो बाकी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के लिए भी हम उतने ही पेशेंट हो सकते हैं और बाकी सारी चीजों पर भी हम उतना ही अमेजिंगली काम कर सकते हैं. यू टेल मी, क्या आप अपने बच्चों को जब ये सब पढ़ाते हो तो क्या आपको भी वो अपने स्कूल का टाइम याद आता है? 3311063 इज माई नंबर. शुरू हो चुका है लाइफ मस्ट है.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd September तक on www.theqatartalks.com पर। Open to all residents of Qatar. Grand finale is on 13 November 2026. The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.
2: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो अलविदा।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल

0: वर्साची का न्यूयॉर्क कमबैक इसी लार्जर कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है और शायद इसीलिए इंडियन लग्जरी के लिए सबसे इंटरेस्टिंग टाइम यही है जब इंडियन होना लिमिटेशन नहीं ब्रांड आइडेंटिटी बनाता है। सो फैशन लवर्स, एक सवाल है आपके लिए कि आपके लिए इंडियन लग्जरी की सबसे खूबसूरत पहचान क्या है? क्राफ्टमैनशिप, कलर्स, एम्ब्रॉयडरी या वो पुरानी कहानी जो हर कपड़े के पीछे छिपी होती है? यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स लाइफ मस्त है। आज अगर हम इंडियन वर्क और एम्ब्रॉयडरीज देखें ना, कितनी एक्सपेंसिव हो गई है। ऐसा लगता है कि ब्रांडेड कपड़ों से भी ज्यादा महंगी है ये, क्योंकि हमने उसे प्रिजर्व नहीं किया। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू?
2: अरे रानी का तो पता नहीं, पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं। यस दोहा, गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह, आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा।
3: सेप्टेम्बर 24th एट हॉलीडे इन दोहा, रेट्रो वाइब्स, प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज।
2: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट्स आज ही बुक करें। धरो

बॉलीवुड के लिए टाइटल एक बहुत बड़ी चीज है. कभी टाइटल सुनते ही पूरी फिल्म का मूड समझ आ जाता है. शोले, डॉन, लगान और अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन सामने आई है. दो अलग फिल्म मेकर्स की फिल्म इसी टाइटल से जुड़ी हुई है, जहां पर एक तरफ फिल्म मेकर जो है विशाल चतुर्वेदी की फिल्म है जो गोस्वामी के नाम पर बनाई जा रही है, और दूसरी तरफ फिल्म मेकर है चंद्रप्रकाश द्विवेदी, उनका टाइटल भी अब यही कहा जा रहा है कि सेम होने वाला है. एक फिल्म का टाइटल इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि टाइटल सिर्फ नाम नहीं होता, वो ऑडियंस के दिमाग में ना पहली इमेज बनाता है. और लगान सुनते ही तो क्रिकेट और वो पुराना वाला इंडिया याद आ जाता है. देवदास सुनते ही पूरा इमोशनल यूनिवर्स सामने आ जाता है. यानी फिल्म शुरू होने से पहले टाइटल कहानी का पहला डायलॉग बोल देता है. और आई विल से कि अगर कुछ टाइटल्स मतलब सेम टाइटल दो मूवी में होंगे तो लोग कैसे पहचानेंगे? सब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि एक ही टाइटल से जुड़ी ये दो सिनेमैटिक जर्नी आगे कैसे जाएंगी. सो यू टेल मी, अगर आपकी जिंदगी भर फिल्म बने तो आप उसका टाइटल क्या रखना चाहोगे? और एकदम ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास. आज

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn!
1: Yes!
0: To play!
1: Absolutely!
0: To grow!
1: With Maserati!
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लग्नी
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद
2: नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट ऑफिस कराफा।
3: ऑल दैट यू नीड।

0: कभी कभी जिंदगी में एक फोन कॉल आता है और फोन रखने के बाद आप कुछ सेकंड तक बस चुप बैठे रहते हो, क्योंकि सामने वाला कोई ऐसा इंसान होता है जिसकी ओपिनियन आपके लिए बहुत मायने रखती है। अभी ऐसा एक मोमेंट एक्टर सूरी के साथ हुआ। उनकी नई फिल्म आई मंदादी, ठीक है, देखने के बाद रजनीकांत जी ने उन्हें पर्सनली फोन किया और उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ की। अब भाई हीरो ने उस कॉल को एक प्राइसलेस मोमेंट बनाया। अब सुनने में छोटी सेलिब्रिटी न्यूज लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही ब्यूटीफुल ह्यूमन इमोशन है, रिकॉग्नाइजेशन। अब किसी ऐसे इंसान से अप्रिसिएशन आपको मिलता है जिसे आप जेन्युइनली एडमायर करते हो, चाहे वो आपका कोई बॉस है, कोई आपका सीनियर है, या जिसने आपको कुछ नया सिखाया है। और खास बात यह है, जब मैं इस मूवी की बात कर रही हूं तो एक्टर सूरी ने करियर की शुरुआत कॉमेडी और सपोर्टिंग रोल से की थी। धीरे धीरे उन्होंने लीड रोल्स की तरफ कदम बढ़ाया और फिर यहां तक पहुंचे हैं सेंट्रल रोल में, यानी कई साल की जर्नी के बाद एक सुपरस्टार का पहला कॉल। शायद हर करियर में ना ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहां पर कोई सीनियर, कोई टीचर, कोई कॉलीग, कोई एक सेंटेंस बोल देता है और फिर आपको ना अलग ही फील आता है, जैसे कोई बोल दे कि मैंने तुम्हारा काम देखा और तुम्हें, मतलब तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। और कभी कभी वो सेंटेंस ना सैलरी इंक्रीमेंट से ज्यादा पावरफुल होता है। सो आपकी जिंदगी में किस एक इंसान की अप्रिसिएशन आपको सबसे ज्यादा मायने रखती है? नाम बताना जरूरी नहीं है, बस उनका रिलेशन बताइए। कोई टीचर, कोई पेरेंट, कोई बॉस, कोई दोस्त। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063। मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।

90s की एक फिल्म याद कीजिए, नाम है अग्नि साक्षी। नाना पाटेकर और मनीषा कोयराला दोनों के बीच सीन पर बहुत ही बढ़िया डायलॉग से शुरुआत होती है और अब फिल्म के राइटर हैं रणवीर पुष्प। रणवीर पुष्प ने दोनों के पुराने इक्वेशन को लेकर बात की थी एक इंटरव्यू में अभी फिलहाल थोड़े दिन पहले ही, और उन्होंने कहा कि दोनों के बीच में ना अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी थी। हालांकि उन्होंने ये कहा कि उनमें अच्छी फ्रेंडशिप थी, इसी वजह से शायद वो सीन जो है वो इतना रियलिस्टिक निकल पाया, और यही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेमा क्वेश्चन निकलता है यहाँ पर। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री आती कहाँ से है? क्या दो अच्छे एक्टर्स कैमरा के सामने खड़े होकर केमिस्ट्री बना सकते हैं, या केमिस्ट्री के लिए एक्टर्स के बीच में कोई रियल अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है? आजकल हम सोशल मीडिया पर इतनी रील्स देखते हैं, कितनी अच्छी केमिस्ट्री होती है दोस्तों के बीच में या फिर जो कपल्स बनते हैं, और देखिए ना, मतलब हर कोई ऐसा लगता है कि एक्टिंग क्लास से होकर आया है। सो यू टेल मी, कभी कभी दो एक्टर्स टेक्निकली ब्रिलियंट होते हैं लेकिन स्क्रीन पर कुछ महसूस नहीं होता, और कभी दो लोग बस एक दूसरे को देखते हैं और ऑडियंस समझ जाती है कि कुछ तो चल रहा है। क्यों? क्योंकि एक्टिंग सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं है, रिएक्शन भी एक्टिंग ही है। आप सामने वाले की बात सुनकर कैसे देखते हो, कितनी देर चुप रहते हो, कहाँ नजर हटाते हो, वहीं से केमिस्ट्री बनती है, और शायद इसीलिए कुछ ऑन स्क्रीन कपल्स ना डिकेड्स बाद भी याद रह जाते हैं। सो आपका फेवरेट बॉलीवुड ऑन स्क्रीन प्लेयर, मतलब जो पेयर है, वो कौन सा है? वैसे हर कोई कहेगा शाहरुख और काजोल का, अमिताभ बच्चन और रेखा जी, शाहिद कपूर और करीना, या फिर कोई बिल्कुल अंडररेटेड पेयर जैसे कि अभी नाना पाटेकर और मनीषा कोयराला की बात हो रही थी। सो यू टेल मी योर फेवरेट पेयर ऑफ बॉलीवुड। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान एंड नंबर सेम 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

हो लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ऑलिव पर क्योंकि लाइफ मस्त है।

किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, मेन्यू खोलते हो और सामने होते हैं 14 स्टार्टर्स, 22 मेन कोर्स, 17 तरह के अलग अलग चाट और अलग कॉर्नर्स। पहले लगता है कि वाह कितनी वैरायटी है, फिर 20 मिनट बाद भाई तुम ही डिसाइड कर लो, ऐसा लगता है कि यार कितना कुछ है। इसे सिर्फ इनडिसेंसिवनेस मत समझिए, साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है विच इज चॉइस एग्जॉशन। और आज मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सारी ईटरीज हैं इसी आइडिया के साथ जो छोटे फोक

दूसरा नाम होता है थकान। मतलब शायद इसी वजह से लोग आज क्यूरेटेड चीजों की तरफ जा रहे हैं, कम ऑप्शंस लेकिन अच्छे ऑप्शंस। सो यू टेल मी कि आपको रेस्टोरेंट्स में बड़े मेन्यू पसंद है या रेस्टोरेंट्स जहां आप जाते हो आपको पता है कि ये पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर एक चीज के लिए ही फेमस है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और ये है लाइफ मस्त है।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पास

0: सो आज चेस लवर्स के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है. चेस ओलंपियाड शुरू हो रहा है और इंडिया की टीम में एक सरप्राइजिंग स्ट्रेटजी डिसीजन लिया गया है. वर्ल्ड चैंपियन जो थे डी गुकेश, जिन्होंने पिछले दो ओलंपियाड में इंडिया के टॉप बोर्ड पर खो खेला था, इस बार बोर्ड 4 पर खेलेंगे. वहीं पर और भी बहुत सारे नाम हैं जो आपको बोर्ड 1, 2 और 3 पर दिखने वाले हैं. एंड अब सुनने में ऐसा लगेगा कि वर्ल्ड चैंपियन को बोर्ड 4 क्यों, लेकिन चेस में यही तो ब्यूटी है, सबसे फेमस प्लेयर होना और हर बार सबसे आगे बैठना एक बात नहीं है. टीम स्ट्रैटेजी जो है वो इंडिविजुअल रेपुटेशन से बड़ी हो सकती है और यही जिंदगी में भी होता है. ऑफिस में सबसे एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हर मीटिंग को लीड नहीं करता, फैमिली में सबसे बड़ा मेंबर हर डिसीजन नहीं लेता. कभी कभी सबसे स्मार्ट डिसीजंस वो होते हैं जो आप कहें कि इस बार तुम आगे जाओ, मैं यहां से टीम को सपोर्ट करने वाली हूं या करने वाला हूं. चेस में हमें एक और चीज सिखाने को मिलती है, सीखने को मिलती है बेसिकली, कि बोर्ड पर आपका कोई मूव अकेला नहीं होता, हर मूव अगले कोई मूव को बदल देता है. यानी स्ट्रैटेजी का मतलब ना सिर्फ ये नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ या मैं क्या चाहता हूँ. स्ट्रैटेजी का मतलब है मेरे इस डिसीजन के बाद बाकी लोगों के ऑप्शंस क्या बचेंगे, और शायद यही चेस को गेम से थोड़ा सा अलग बनाता है. सो यू टेल मी, आज का क्वेश्चन ये है कि आप डिसीजन लेते वक्त ज्यादा सोचते हो अपनी पोजिशन के बारे में या पूरी सिचुएशन के बारे में. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान. शो का नाम है लाइफ मस्त है.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट

0: आजकल की जनरेशन की बात ना थोड़ी सी अलग है। देखिए मतलब हर किसी को प्यार से ज्यादा मुझे लगता है कि कंपैटिबिलिटी चाहिए। आज आप देखोगे शादियों में या फिर रिलेशनशिप्स में एक बहुत वर्ड जो है सुनने को मिलता है विच इज कंपैटिबिलिटी। पहले प्यार की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग थी, वो मुझे बहुत पसंद है, मतलब वो बॉलीवुड वाली, उसके साथ अच्छा रहना लगता है, हमारी केमिस्ट्री बढ़िया है, ऐसे ऐसे डायलॉग्स आते थे। लेकिन आज लोग थोड़ा सा ना स्प्रेडशीट लेकर प्यार में उतरते हुए लगते हैं, जैसे कि करियर कंपैटिबिलिटी, लाइफस्टाइल कंपैटिबिलिटी, फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी, फैमिली कंपैटिबिलिटी, ट्रैवल करना उसे पसंद है या नहीं। और फिर सवाल आता है कि क्या प्यार को इतना लॉजिकली एनालिस करना मतलब किया जा सकता है, क्योंकि कंपैटिबिलिटी इंपॉर्टेंट जरूरी है। अगर एक इंसान को हर वीकेंड बाहर जाना है और दूसरे को घर से निकलना पसंद ही नहीं है, अगर एक के लिए सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट मनी और दूसरे के लिए फ्रीडम, तो सिर्फ केमिस्ट्री कितने दिन काम करेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर दो लोग हर बॉक्स टिक करते हो फिर भी उनके बीच कोई इमोशनल कनेक्शन ना हो तो वो रिलेशनशिप कितना मीनिंगफुल होगा आपको खुद ही पता है। शायद हेल्दी रिलेशनशिप में ना दोनों चीजें साथ चलती हैं, कंपैटिबिलिटी आपको साथ रहने में मदद करती है और अंडरस्टैंडिंग आपको साथ बने रहने में। सो आई वॉज थिंकिंग कि यार कितनी सारी चीजें हैं जो आजकल हम लोग चेकआउट करते हैं, यू नो, बिफोर कमिंग इनटू कोई भी रिलेशनशिप, राइट? इवन फ्रेंड्स में भी हम यही ढूंढते हैं। सो कंपैटिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि दोनों लोग एक जैसे हों, कभी कभी ना डिफरेंसेस ही रिलेशनशिप को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बस क्वेश्चन ये है कि क्या आप उन डिफरेंसेस को समझ सकते हैं। सो आज का रिलेशनशिप क्वेश्चन ये है कि आपके लिए पार्टनर चूज करते टाइम पर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सेम इंटरेस्ट, सेम वैल्यूज, या बस ये फीलिंग कि यार इस इंसान के साथ मैं रियल सेल्फ हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। टेल मी नंबर सेम 3311063। You are listening Radio Olive. Stay tuned. Geo Bindas.
1: Radio Olive Pa. Fresh song of the hour.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट

वर्क कल्चर की अगर मैं बात करूँ तो हमारी जनरेशन की ना एक बहुत अजीब सी आदत है, कोई पूछे हाउ आर यू, हम कह देंगे यार थोड़ा सा बिजी। जैसे बिजी होना सक्सेस का सर्टिफिकेट बन चुका है। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। यू वॉन्ट बिलीव कि मेरे पास सुबह एक मैसेज आया था, क्या तुम अभी फ्री हो, मैं तुम्हें कॉल कर सकती हूँ। और आई वॉज लाइक कि यार मतलब किसी को अगर बात करनी है तो कभी भी कॉल कर लो यार, मतलब क्यों ये समझा जाता है कि

0: रहने के लिए एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और धीरे धीरे हमने एक बहुत ही अलग सी इक्वेशन बना ली है, बिजी मतलब इम्पोर्टेंट। लेकिन जरूरी नहीं है आप 12 घंटे काम करके भी वही काम कर सकते हो जो 7 घंटे में हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी का सवाल आवर्स का है ही नहीं, अटेंशन का है। सो आज आप अपने लिए एक ऑनेस्ट सवाल अपने मन में पूछिए और बताइए खुद को कि अगर आपकी लाइफ में मतलब पूरी लाइफ में से किसी एक चीज़ को कम कर दिया जाए, काम के आवर्स हो, चाहे वो फ़ोन के नोटिफिकेशंस हो या मीटिंग या फिर अननेसेसरी कमिटमेंट्स हो, तो आप क्या हटाना चाहोगे, आपको सबसे ज़्यादा राहत किससे मिलेगी। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है। Cool song.

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास जैकमैन की पावर पैक्ड रेंज हैवी ट्रक्स टिपर्स ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ विजिट कार्मिल ग्रुप

So, इस बार फैशन वीक में एक बहुत ही सटल चेंज दिखाई दे रहा है। हाई पोनीटेल जो कई सालों से स्लीक, यंग और एनर्जेटिक लुक का सिंबल रही है, अब थोड़ा पीछे जा रही है। न्यूयॉर्क फैशन वीक में डिजाइनर्स और हेयर स्टाइलिस्ट ने बार बार लो पोनीटेल को इस्तेमाल किया है, कई बार स्लीक, कहीं लूज, कहीं नेचुरल, तो कहीं सिर्फ एक नॉट और हेयर एसेसरीज के साथ। आप सुनने में लगेगा कि अरे पोनीटेल में इतना क्या है, लेकिन ब्यूटी ट्रेंड्स अक्सर सोसाइटी के मूड को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। कुछ सालों तक ना ब्यूटी का मतलब था परफेक्ट हेयर, परफेक्ट मेकअप, परफेक्ट कॉन्टोरिंग और हर चीज एकदम पॉलिश्ड। अब धीरे धीरे एस्थेटिक बदल रहे हैं, थोड़ा सॉफ्टर, थोड़ा रिलैक्स्ड और थोड़ा मैंने बहुत कोशिश नहीं की फिर भी अच्छा लग रहा है, मतलब ये दिखाना चाहते हैं। और शायद यही रीजन है कि लो पोनीटेल इतनी इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि इसमें ग्लैमर है लेकिन डेस्परेशन नहीं है। आप इसे ऑफिस में भी कर सकते हो, ट्रैवल में भी और किसी एलिगेंट इवनिंग आउटफिट के साथ भी। यानी ब्यूटी का नया आइडिया ना शायद ये नहीं है कि मैं कितनी तैयार दिख रही हूँ, बल्कि ये है कि मैं कितनी नेचुरली कॉन्फिडेंट दिख रही हूँ। और ऑनेस्टली ये सिर्फ हेयर स्टाइल की बात नहीं है, फैशन भी शायद धीरे धीरे परफेक्शन से पर्सनैलिटी की तरफ जा रहा है। सो लेडीज, क्विक पोल, आप मुझे बताइए हाई पोनीटेल वाली एनर्जी पसंद है या फिर लो पोनीटेल वाला एफर्टलेस एलिगेंस पसंद है आपको। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम, मैं हूं मुस्कान। शो का नाम यस ऑफ कोर्स लाइफ मस्त है। और आजकल जो न्यूयॉर्क फैशन वीक चल रहा है उसमें मुझे बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें जो है दिखाई देती है, तो मैं सारी चीजें आपके पास लेकर आ जाती हूँ। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट ऑफ

0: सो एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कीजिए, अपनी मदर की या दादी की वार्डरोब खोलिए, हो सकता है आपको कोई पुरानी साड़ी मिल जाए, कोई हैंडबैग या कोई ज्वेलरी मिल जाए। मतलब मैं तो जब भी घर जाती हूँ तो अपनी मम्मी के वो पिटारे को खोल के ढूंढती रहती हूँ कि इसमें मुझे क्या नया मिलने वाला है, क्योंकि हर बार जितनी बार देखती हूँ हर बार कुछ नया दिखाई देता है। या कोई ऐसा फैब्रिक जिसे देखकर आपको लगता है कि ये तो बहुत पुराना है। अब वही चीज़ अगर किसी डिज़ाइनर बुटीक में रख दी जाए तो उसके नीचे लिख दिया जाएगा विंटेज लिमिटेड पीस, तो हम पूछेंगे कि प्राइस कितना है। और यही फैशन की सबसे मजेदार साइकोलॉजी है, पुराना और विंटेज एक चीज नहीं है। पुराना मतलब जिसकी उम्र ज्यादा है, विंटेज का मतलब जिसकी कहानी, जिसकी क्राफ्टमैनशिप, कल्चरल वैल्यू आज भी डिजायरेबल है। सो आज फैशन में विंटेज एस्थेटिक्स, हेरिटेज पीसेस और ओल्ड स्कूल सिलॉट्स, मतलब इन सब की जगह इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। तो दुनिया में पुरानी चीज़ें जो हैं वो ऑथेंटिसिटी देने लगी हैं। हर चीज़ मास प्रोड्यूस्ड है, हर मतलब हाथ से बनी एक इम्परफेक्ट चीज़ ज़्यादा स्पेशल लगती है। जब कोई सेम ट्रेंड पहन रहा होता है तब दादी की पुरानी ज्वेलरी अलग से दिखती है, और शायद लग्जरी की डेफिनेशन भी बदल रही है। पहले लग्जरी का मतलब था बिल्कुल नई चीज़ें, अब लग्जरी का मतलब है कि एकदम रेयरेस्ट हो। सो आप आज अपनी मम्मी से पूछेगा कि आपके पास ऐसा क्या पुराना है जो बहुत ही ज्यादा रेयर है। सो अभी के साथ आई विल से कि मेरे जाने का टाइम हो गया है, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम कॉन्वर्सेशन के साथ विद लॉट ऑफ न्यू टॉपिक्स, लॉट ऑफ न्यू ट्रेंड्स। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर song of the hour. Yeah, guys.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan and you're listening to

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, आई एम राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में.

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहाँ पे चलिए एक साथ बैठकर शुरू करते हैं ऑलिव रिचार्ज को, जहां पे गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए, 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Hi, this is A.R. Rahman. Listen to my songs on 106.3 Radio Olive.
2: Jio Bindas.
0: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

0: is brought to you by
1: Malabar Gold and Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में. अब आप अपनी पुरानी gold jewelry चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं. सिर्फ Malabar Gold and Diamonds Safari Mall में.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे अभिषेक शर्मा के हीरोइक्स के बारे में बात करना चाहेंगे। अफगानिस्तान के साथ जो मैच हुआ था उसमें क्या बढ़िया खेला यार। 157 का टारगेट तो बहुत जल्दी इंडिया ने जो है अचीव कर लिया था, मगर 32 बॉल्स में 82 रन्स और इतना बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ उस बंदे ने खेला और एक छोटा सा रिकॉर्ड भी जो है उन्होंने ब्रेक किया है। ठीक है, तो राशिद खान के खिलाफ 30 बॉल प्रॉपरली फेस करने वाले 113 बैट्समैन में से 234 का स्ट्राइक रेट सिर्फ इसी का है, अभिषेक शर्मा का ही है, और बाकी 112 बैट्समैन जो है नहीं कर पाए इतना बढ़िया परफॉर्म, वो भी राशिद खान के अगेंस्ट। बट ही इज द ओनली वन टिल नाउ। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है। Cool song.

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल इन 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे गाड़ी चलाते वक्त आप जरा सोच के देखिए, जब हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रैफिक जैम बोलते हैं। मगर ट्रैफिक जैम क्यों बोलते हैं? और भी बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं, जैसे कि ट्रैफिक कंजेशन बोलते हैं, मगर ट्रैफिक जैम बहुत कॉमनली यूज एक टर्म है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैम जो वर्ड है उसका ट्रेडिशनल मीनिंग है स्ट्रक होना, रुक जाना, मूवमेंट का पॉसिबल ना होना करके। इसलिए ट्रैफिक जैम को ट्रैफिक जैम बोलते हैं। ये है उसका एक्चुअल जो है थॉट। और उसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि ट्रैफिक जो वर्ड है उसका ओरिजिनल मीनिंग जो है वो है मूवमेंट ऑफ गुड्स, ट्रेड एंड पीपल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और 1900s के स्टार्टिंग में कार, ट्रक, बसेस जो हैं ये स्ट्रीट्स में आने लग गए थे, तो ट्रैफिक जो है एक स्टैंडर्ड वर्ड बन गया था फॉर व्हीकल मूविंग ऑन रोड्स। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas. Olive Recharge.
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और एक छोटा सा थॉट आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। तो मुझे कल मेरे फ्रेंड ने जो है एक फोटो भेजी थी, वो पालिका बाजार में गया था, और हम पहले हैंग आउट करते थे, ठीक है, पालिका बाजार के आसपास, दिल्ली में सीआर पार्क के आसपास हम ऐसे घूमते थे। तो एक स्टोर में जब हम जाते थे, एक स्टोर था अपना जहाँ पे हम जाते थे बार बार चीजें खरीदने के लिए, तो वहाँ का फोटो उसने मुझे भेजा था। तो एकदम से मेरे मन में ख्याल आया कि ये पालिका बाजार जो है बेसिकली अंडरग्राउंड मार्केट है। वैसे ही क्या अंडरग्राउंड सिटीज हैं क्या? अब देखिए, हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो एक अंडरग्राउंड सिटी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो इस सिटी का नाम है डेरिनक्यू, जो टर्की में आता है। ये जो है सबसे डीपेस्ट एंशिएंट अंडरग्राउंड सिटी है। ये 85 मीटर्स यानी कि 280 फीट डीप जाता है, और 18 लेवल्स है इसमें, जिसमें 20,000 तक लोग जो है रह सकते थे। उसके साथ साथ एक नए आज के जमाने के अंडरग्राउंड सिटी के बारे में बात करूंगा, तो मैं बात करना चाहूंगा मॉन्ट्रियल अंडरग्राउंड सिटी कनाडा में। ये जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट अंडरग्राउंड पेडेस्ट्रियन नेटवर्क है, जो 32 किलोमीटर तक स्ट्रेच करता है, जिसमें शॉप्स, होटल्स और मेट्रो स्टेशन सबके लिए कनेक्टिविटी है। और यही बात बताते हुए हम जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर। ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार। ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026। द कतर टॉक्स 2026. Communicate, connect and conquer.
2: Hi, मैं हूँ विवेक आनंद ओबेरॉय. You're listening to Radio Olive. Jio Bindas.
0: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
3: Olive laga aur ho ja recharge.
4: Olive recharge.
5: Olive recharge. Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
4: Olive Recharge.
6: This hour is brought to you by
7: Malabar Gold and Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में। अब आप अपनी पुरानी gold jewelry चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं। सिर्फ Malabar Gold and Diamonds Safari Mall में।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक सवाल मेरे मन में आया। बाहर रखते वक्त ब्रेड जो है वो सूख के हार्ड हो जाता है, और बिस्किट जो है वो सॉफ्ट और सॉई हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? चलिए इसके बारे में जरा हम जांच पड़ताल करते हैं। तो ब्रेड को जब बनाया जाता है तो उसके अंदर के जो स्टार्च मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉइस्चर को जो है अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है, उसके बाद वो एक्सपैंड करते हैं। मगर जब हम ब्रेड को उठा के बाहर रखते हैं तो ये मॉइस्चर जो है बाहर निकल जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और स्टार्च मॉलिक्यूल्स जो है अपने आप को रीअरेंज करते हैं और एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाते हैं, जिससे ब्रेड जो है सूखा सूखा और हार्ड हार्ड हमें लगने लग जाता है। मगर बिस्किट्स के मामले में छोटा सा एक चेंज है। बिस्किट्स जब बनाते हैं तो इनिशियली मॉइस्चर जो है बहुत कम होता है, और बिस्किट्स जनरली हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, यानी अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से वो मॉइस्चर जो है अब्सॉर्ब कर लेते हैं, और जब वो मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेते हैं तो सॉफ्ट और हल्के से फ्लफी से हो जाते हैं। तो ये है रीजन बाहर रखते वक्त ब्रेड क्यों हार्ड हो जाता है और बिस्किट क्यों सॉफ्ट हो जाता है। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास। अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतर 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू?
2: अरे रानी का तो पता नहीं पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं यस दोहा गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह आलोक कदरे जरूर आ रहे हैं यस दोहा गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह आलोक कदरे
3: सिर्फ मलबार गोल्डन डायमंड सफारी मॉल में

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदीप। देखिए, मेरे यहाँ पे कतर में आके 2 साल हो चुके हैं, मगर अभी भी एक बार भी मैं डेजर्ट में नहीं गया हूँ। मगर डेजर्ट के बारे में काफी इंटरेस्टिंग एक बात जो है मैं जानता हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हम सब जानते हैं कि डेजर्ट जो है डे टाइम के दौरान बहुत गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, मगर रात को वो उतना ही ज्यादा ठंडा भी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूं मैं। डेजर्ट में जो है वाटर वेपर्स नहीं होते उतने, और ये वाटर वेपर्स जो है एक ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं। यानी कि अगर वाटर वेपर्स होते वहां पे ज्यादा तो गर्मी को वो ट्रैप करके रखते, मगर वाटर वेपर नहीं है तो गर्मी जो है जितनी जल्दी आएगी उतनी ही जल्दी चली जाएगी। क्योंकि गर्मी को होल्ड ऑन करने के लिए या फिर गर्मी को पकड़े रखने के लिए ऐसा कोई चीज़ नहीं है। क्लाउड कवर कम रहता है, वाटर वेपर्स कम रहते हैं, तो गर्मी को डेजर्ट जो है स्टोर नहीं कर पाता या फिर होल्ड ऑन नहीं कर पाता, इसलिए वो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है और ड्रॉप भी काफ़ी बड़ा, यानी कि 40-50 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है टेम्परेचर ड्रॉप हो सकता है। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम आपको एक चीज याद दिलाना चाहेंगे। वो यही है कि अगर आप अपने ऑफिस टाइम के दौरान मस्ती करना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हंसना चाहते हैं, गेम्स खेलना चाहते हैं, रिचार्ज और रीएनर्जाइज होना चाहते हैं, तो फिर रजिस्टर कीजिए हैप्पीनेस लॉन्च के लिए। मैसेज कीजिए हमें 3311063 पर HL Space अपने कंपनी का नाम, क्योंकि हैप्पीनेस लॉन्ज में हम आपके वर्क प्लेस को विजिट करते हैं, फन करते हैं, गेम्स खेलते हैं, आपको रिचार्ज और रीएनर्जाइज करते हैं, और यही याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: घर का क्या हाल बना रखा है तुमने? तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते, कहाँ है सब?
2: कारपेट के नीचे, सीलिंग के जारों में और दीवार पर।
1: क्या कॉकरोचेस, मकड़ी, धूल और जाले? अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर।
2: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज, प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ, और हाँ, मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं आपको स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ बात बताना चाहूंगा। ठीक है, वर्ल्ड का ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है एक इंसान का जो बिना सोए सबसे ज्यादा रहा है वो है 18 दिन 21 घंटे 40 मिनट, और ये रिकॉर्ड बनाए हैं रॉबर्ट मैकडॉनल्ड ने, यानी कि टोटल ऑफ 453 आवर्स एंड 40 मिनट्स विदाउट स्लीप, वो भी 1986 में रिकॉर्ड बनाया था। मगर सबसे फेमस और साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड एक केस है रैंडी गार्डनर का। 1964 में 17 साल के रैंडी गार्डनर ने, जो उस टाइम पे एक हाई स्कूल स्टूडेंट थे, उन्होंने एक साइंस फेयर प्रोजेक्ट के लिए 11 दिन और 25 मिनट जो है बिना सोए बिताया, और साइंटिस्ट ने जो कुछ ऑब्जर्व किया उसके बारे में जरा आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, जब रैंडी गार्डनर के पूरे प्रोसेस को उन्होंने ऑब्जर्व किया तो सेकेंड डे से उनको फोकस के इश्यूज आने लग गए थे, मेमोरी लैप्सेस होने लग गए थे। 4 and 5 days की अगर हम बात करें तो हैलुसिनेशंस होने लग गए थे, और डे 11 तक तो उनकी स्पीच जो है स्लर्ड हो गई थी, काफी इरिटेबिलिटी जो है वो डेवलप कर चुके थे, टेम्पर बहुत शॉर्ट हो चुका था, और बेसिक अरिथमेटिक भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। और उसके बाद 1997 से गिनस ने जो है स्लीप रिलेटेड रिकॉर्ड्स को ऑब्जर्व करना जो है बंद कर दिया, सो दैट पीपल डोंट हार्म देमसेल्व्स। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास, और याद दिलाते हैं कि अच्छी नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तभी जिंदगी बिंदास तरीके से

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं सोच रहा था कि हम यौन क्यों करते हैं, ठीक है, उबासियां क्यों लेते हैं करके। तो उसके बारे में जब मैंने थोड़ा इसे रिसर्च किया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली। सो बेसिकली यौन करना जो है हमारे ब्रेन को कूल करने के लिए होता है। तो जब हम यौन करते हैं तो ये हमारे ब्रेन के लिए कूलिंग सिस्टम की तरह एक्ट करता है। तो जो हम जॉ वाइड करके ओपन करते हैं और डीपली इनहेल करते हैं तो ये हमारे स्कल की ओर का ब्लड फ्लो जो है बढ़ा देता है, और कूलर एयर जो है, ठंडा हवा जो है, स्कल की ओर लेकर आता है, जो एक ओवर हीटेड या फिर टायर्ड ब्रेन को अच्छा परफॉर्म करने में और हेल्प करता है। और उसके साथ साथ हमारे बॉडी को भी जरा ये थोड़ा एक वेकअप सिग्नल देता है। एक यौन जो है हमारे फेस के मसल्स को स्ट्रेच करता है, जॉ को स्ट्रेच करता है, लंग टिश्यूज को स्ट्रेच करता है, अलर्टनेस जो है इंक्रीज हो जाती है। सबसे कॉमन जो बात हमने सुनी है वो ये है कि जब कोई और यौन करता है तो हम भी उसे देख के यौन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यौनिंग इज कंटेजियस, सो इज हैप्पीनेस। तो हंसते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: 106.3 FM.
1: Biryani belly, bye bye. Flabs instead of abs, not for long. Falcon Fitness is landing in Al Rayyan, September 18th, 7 PM, and bringing the star power: Jai Surya, Esther Anil, Shamna Kasim, producers CR Saleem and Rajesh Krishna. Al Rayyan, ready to get ribbed. Falcon Fitness, spread your wings.
0: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
2: Olive Recharge.
3: This hour is brought to you by
4: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो, बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल इन 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम याद दिलाना चाहेंगे आपको कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो सीधा जाइए इंस्टाग्राम पर radioolive.qa सर्च कीजिए। वहां पे अगर फॉलो बटन दिख रहा है तो फॉलो कीजिए, और फॉलोइंग दिख रहा है तो बहुत बढ़िया। और आप हमारे कंटेंट को चेकआउट कीजिए, पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें सुनते हुए स्टोरी बनाकर डालिए इंस्टाग्राम पे, हमें टैग कीजिए, हम उस स्टोरी को रीशेयर करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कई सारे बढ़िया बढ़िया डिजिटल कॉन्टेस्ट जो है हमारे पेज पर आते हैं, आप उसके साथ भी इंटरेक्ट कीजिए, आपको जीतने के मौके मिलेंगे, वो भी बढ़िया बढ़िया गिफ्ट। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू
3: यू घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
4: कारपेट के नीचे सीलिंग के जालों में और दीवार पर
3: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर
4: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
0: Olive Recharge Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas
5: Olive Recharge
6: This hour is brought to you by
7: Malabar Gold and Diamonds ka brand new showroom ab Safari Mall Abu Hamur mein ab aap apni purani gold jewelry chahe wo kahin se bhi purchase ki gayi ho bina kisi loss ke exchange kar sakte hain sirf Malabar Gold and Diamonds Safari Mall mein

भाई धीरे धीरे टाटा बाबाई गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं और 3 घंटे खत्म हो चुके हैं। मगर जाने से पहले यही दरख्वास्त है आपसे कि अब अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: अब मिल सकता है और भी ज्यादा, तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
1: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
0: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
1: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिले।
0: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर। ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार। ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026। The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.

बीच बीच में मुझे ऐसा लगता है कि सैफ अली खान को ना दौरे पड़ते हैं कि यार अब ना थोड़ा हटके मूवी कर लेता हूँ, मजा आ जाएगा। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश अंशु, आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए यार, आज जो है बहुत ही फन चीजें आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, मतलब कुछ ऐसी टेक्निक आपके लिए लेकर आई हूँ जिससे अगर आप जॉग करते हैं या अपने 10,000 स्टेप्स जो है वो पूरे नहीं कर पा रहे तो वो पूरे हो जाएंगे। यस, मतलब मैं खुद के लिए ढूंढ रही थी पर मिल गया, तो मैंने सोचा कि आप सबसे भी शेयर करूंगी। क्या है ना कि ऐसी चीजें शेयर करने से ना प्यार बढ़ता है, एंड ऑफकोर्स आप लोगों की प्यार की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी जबरदस्त इवनिंग में आज बहुत सारी ऐसी चीजें पे भी हम बात करने वाले हैं जिन पे अक्सर बात होती नहीं है, सो उस पे भी आपको ओपिनियन मुझे चाहिए पड़ेगा। लेकिन उससे पहले देखिए, कॉकटेल 2 के गाने से अपने शो की शुरुआत हम करेंगे, सो वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना जो है आप इंजॉय कीजिए। थोड़ी सी देर में आपको मैं बताऊंगी कि मौसम का आखिर क्या मामला चल रहा है। बाकी 3311063 पर हाय हेलो गुड इवनिंग जल्दी से लिख दो ताकि मुझे जो है थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए आगे के शो के लिए। बाकी स्टे ट्यून्ड और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी ओपन दास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 5:12, दैट इज 5:12। स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।
2: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
3: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2-3 minute का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर। ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार। ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 November 2026। The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.
4: Lulu Mega Deals are back and this time it's all about bigger deals, better prices and smarter shopping.
5: From 16 to 19 September, grab special offers and brand new prices on selected items at Lulu.
4: 4 days, mega deals, more savings.
5: So get your shopping list ready because this time at Lulu, your shopping is going mega while your spending goes down.
4: Lulu Mega Deals 2026. Spend less, save more.
6: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
7: गुलराज सिंह
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
7: जियो बिंदास।
8: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
9: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ऑलिव पर। जियो बिंदास,
10: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
11: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
12: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

बस आसमान ने भी यही कहा था कि रंग दे मुझे रंग दे, और सूरज ने उसे सुर्ख और लाल रंग में रंग दिया है। इस वक्त जो है बहुत ही बढ़िया आसमान दिख रहा होगा, आई एम श्योर। लेकिन मैं कितनी मजबूर हूँ कि शाम का आसमान भी नहीं देख सकती, क्योंकि मेरे स्टूडियो में तो खिड़की ही नहीं है। सो अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मुझे आसमान दिखाने की, वो सुर्ख जो है नारंगी रंग का आसमान। हाँ, कितना बढ़िया लगता है यार सनसेट के टाइम। 3311063 पर जल्दी से मुझे बाहर की फोटोज जो है जरा भेज दीजिए कि यार आखिर बाहर मौसम कैसा हो रहा है, माहौल कैसा हो रहा है, एंड सनसेट जो है वो बस होने ही वाला होगा तो कितना अमेजिंग लग रहा होगा ना यार आसमान। तो जल्दी से फोटो भेजो। बाकी मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए जबरदस्त इवनिंग लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया है। अब देखो यार आज के जो है मौसम की बात कर लेते हैं। इस वक्त का टेम्परेचर दोहा में 36°C हो रहा है, एटलीस्ट मेरा फोन तो मुझे यही बता रहा है। आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 41°C रहने वाला है, आज का लोएस्ट टेम्परेचर 30°C रहने वाला है। यानी कल मैंने

0: 1063 पर। फिलहाल जबरदस्त हिट आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जी ओपन दस।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: Falcon Fitness is landing in Al Rayyan. September 18th, 7 PM. And bringing the star power, Jay Surya, Esther Anil, Shamna Kasim, producers CR Saleem and Rajesh Krishna. Al Rayyan ready to get ribbed. Falcon Fitness, spread your wings.
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू
3: यू घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
4: कारपेट के नीचे सीलिंग के जालों में और दीवार पर
3: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर
5: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
6: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
8: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: काका बताई भैया हमरा हाल का है।
1: बताए दे।
0: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

बताइए जी, अगर ऐसे एड्रेस देने लग गए हम तो हो गया ना कि जो है ये गंगा किनारे के बगल में रहते हैं, हम जो है किराना स्टोर के बगल में रहते हैं, मैं जो हूँ सुपर मार्केट के बगल में रहती हूँ। वेलकम जी, 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कंसेशन शो, आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए यार, हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन है वो जिन्होंने मेरे लिए जो है प्यारी प्यारी फोटोज खींच के हमें भेजी है। सबसे पहले तो मोहम्मद जी ने बहुत ही प्यारी सी फोटो भेजी है, बाकी उसके बाद हम बात करें दिनेश जी की, सो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत फोटो भेजी है। उसके बाद सब्यसाची, हाय हाउ आर यू, और सनसेट होती हुई इन्होंने बहुत ही ज्यादा प्यारी फोटो भेजी है। उसके बाद मालिक वकास जी ने भी बहुत खूबसूरत फोटो भेजी है, एंड माइकल डिसूजा जी ने भी बहुत ही प्यारी फोटो भेजी है, स्टैनी बेसिकली इनका नाम है। दीपक कामले जी ने भी बहुत ही प्यारी सी फोटो भेजी है, अबरार जी ने बहुत ही अच्छी अच्छी फोटो भेजी है, कार से फोटो जो है थोड़ा संभल के आप फोटो खींचिए, फोन यूज नहीं करना है हमें कार चलाते हुए, ठीक है, बाकी फोटोज बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। उसके बाद रेवा जी ने भी बहुत ही प्यारी फोटो जो है वो भेजी है, थैंक यू सो मच आप सबको इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत फोटो भेजने के लिए, एंड सुर्ख आसमान मुझे दिखाने के लिए। इसी बात पर देखिए, आपके अंदर वो जो यू नो ऑफिस में काम करके जो इंसान सो चुका है, अंदर आप डीमोटिवेटेड हो गए, उसको वेकअप कहने के लिए वेकअप सिड मूवी का टाइटल ट्राई कर आपके रेडियो सेट पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए, फिर हमारी जो गॉसिप है उसे जारी रखेंगे। मैं हूँ आपकी कशिश, मेरे साथ बने रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn!
1: Yes!
0: To play!
1: Absolutely!
0: To grow!
1: With Maserati!
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करे डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसेराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसेराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
3: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू?
2: अरे रानी का तो पता नहीं पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं यस दोहा गेट रेडी फॉर धरोहर सुरो की अमर कहानी फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज़ फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा
4: सेप्टेम्बर 24th एट हॉलीडे इन दोहा रेट्रो वाइब्स प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज
2: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट्स जी बुक करें धरोहर मिस मत करना
5: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
8: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर। ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार। ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026। The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.

दिलेर मेहंदी जी, अभी रीसेंट पास्ट में अगर कुछ उनका काम जो मुझे बहुत अच्छा लगा है तो वो इस गाने में लगा है, बैक टू देयर यू नो मेन एनर्जी मेन कैरेक्टर वाइब में जो है इस गाने में दिखे हैं। एंड मुझे जो है काफी पसंद है दिलेर मेहंदी जी, मतलब उनके गानों में ना ऐसे फन आ जाता है, ऐसे अगर स्टेप्स नहीं भी आते हैं तो भी कुछ भी कर दो जो है वो बीट से मैच कर ही जाता है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल ओवर, मैं हूँ आपकी कशिश, इन शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब वक्त हो गया है चुटकी भर सॉन्ग वाला जो है गेम खेलने का, क्योंकि एक चुटकी सॉन्ग की कीमत तुम क्या जानो। ठीक है गाइस, कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग हो गई है बट कोई बात नहीं। आज का गाना जो है वो अगेन मेरे फेवरेट यू नो एक्टर का है एंड मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एंड बहुत ही ज्यादा रोमांटिक है। मतलब हर लड़की के सपनों का अगर कोई गाना है तो वो यही गाना है, हर लड़की को चाहिए कि इस गाने को कोई उनके लिए डेडिकेट कर दे। सो अभी आप ये गाना पहचानिए एंड उसके बाद फिर मैं जो है आपको बताऊंगी कि आप ये डेडिकेट जो है कैसे कर सकते हैं। ओके सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर कान लगाकर ध्यान लगाकर ये गाना सुनो और मुझे बताओ कि ये जो गाना है ये कौन सी मूवी का है एंड इस गाने का नाम क्या है। वॉल्यूम बढ़ाओ, एंजॉय करो, सुनो, बताओ मुझे। सुना नहीं सुना? वॉल्यूम बढ़ाओ यार।

कुछ भी मांगोगे जो है वो मिल जाएगा, लेकिन जान मान पे यार इतना ज्यादा नहीं। सो एक बार और अगर आपको सुनना है तो मैं सुना सकती हूँ, और आपको गेस करना है कि ये जो गाना है ये कौन सी मूवी का है, इस गाने का नाम क्या है। ये जो है जहाँ रोका है ना बिल्कुल वहीं पे गाने का नाम आता है। 3311063 पर आपकी कसूस को मैसेज करके ऑडियो नोट भेज के आप मुझे बता सकते हैं कि यार कौन सा गाना है और इस मूवी का नाम क्या है। 3311063 इज द नंबर। फिलहाल जो है आप मुझे आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको एक अमेजिंग वाला गाना जो है मैं वापस आऊंगा मूवी से सुना देती हूँ। सो वॉल्यूम बढ़ाकर इस गाने को भी इंजॉय करो और कहते रहो आपकी कसूस के साथ जियो बिंदास।

0: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 6:12, दैट इज 6:12। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: जैकमैन की पावर पैक रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कारमिल के साथ। विजिट कारमिल ग्रुप नाउ।
2: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
3: Lulu Mega Deals are back, and this time it's all about bigger deals, better prices and smarter shopping.
0: From 16 to 19 September, grab special offers and brand new prices on selected items at Lulu.
3: 4 days, mega deals, more savings.
0: So get your shopping list ready, because this time at Lulu, your shopping is going mega while your spending goes down.
3: Lulu Mega Deals 2026. Spend less, save more.
4: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ। Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Yeah.

0: कैसे कैसे नहीं होगी शाम शानदार, जब आपकी कशिश आपके पास है आपकी इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने के लिए। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखो यार, वैसे इतना हैप्पी होगी, इतना खुश होगी मैं जबरदस्त इवनिंग बोलती हूँ, कल जब जो है सिमरन आ जाएगी आप लोगों के पास आपकी इवनिंग्स को और ज्यादा जबरदस्त बनाने के लिए 100 किलो जो है प्यार लेकर, तो फिर मैं क्या करूंगी। मुझे ऐसा लगता है मैं तो अपने लाइफ मस्त शो में भी यही बोलूंगी कि आपके लिए जबरदस्त इवनिंग ले आई हूँ, एंड फिर मुझे रियलाइज होगा कि यार अभी तो मैं इवनिंग में नहीं हूँ, मैं तो मॉर्निंग में हूँ। सो अगर एक दो दिन मुझसे थोड़ी सी ऐसे गलती से लाइफ मस्ते की जगह जबरदस्त इवनिंग ऐसे मैं बोल दूँ तो जाने देना यार, माफ कर देना। क्या है ना कि अब आदत हो गई है आप लोगों से इस वक्त पे बातचीत करने की, तो थोड़ा सा ना ऐसे स्केड्यूल जो है चेंज होता है तो फिर थोड़ा सा लगता है यार क्या कर सकते हैं। लेकिन वक्त हो गया है अभी जो है आपसे चुटकी भर सॉन्ग में जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसके जिन लोगों ने जवाब दिए हैं उनकी एक फहरिस्त बनाने का, एक लिस्ट बनाने का। लेकिन जो लोग अभी अभी जो है हमें ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि चुटकी भर सॉन्ग में आज का गाना बड़ा ही सिंपल सा है, एंड अगर आप लोगों ने जो है अभी तक नहीं सुन पाए थे तो हम फिर से सुना देते हैं यार, आपको एक और मौका दे देते हैं। सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर कान लगा के ध्यान लगा के सुनो। और बताओ जरा कि ये जो गाना है इस गाने का नाम क्या है, एंड इस गाने को जो है जिस मूवी में फीचर किया गया है उस मूवी का नाम क्या है। बाकी जिन लोगों ने सही आंसर दिए हैं उन लोगों के नाम जान लेते हैं, आंसर जो है हम अभी आपको नहीं बताएंगे क्योंकि जिन लोगों ने अभी अभी ये गाना सुना है उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। सो रीना जी ने जो है वो बिल्कुल सही आंसर दिया है, कंग्रेचुलेशंस रीना जी। उसके बाद कनीज इब्राहिम जी ने जो है एक ऑडियो नोट भेजा है जो मैंने तक अभी तक सुना नहीं है, लेकिन आई होप आपने सही ही आंसर दिया होगा। एंड उसके बाद एक और मैसेज आया है और बिल्कुल सही जो है आपने आंसर दिया है, आपका नाम मुझे नहीं समझ आ रहा है, एक बार प्लीज मुझे ऑडियो नोट पे अपना नाम जरूर बोल के भेजिए क्योंकि मेरा नाम ना अक्सर लोग गलत प्रोनंस करते हैं एंड मुझे ना काफी फिर बुरा लगता है, सो मैं आपका जो नाम है वो गलत प्रोनंसिएट नहीं करना चाहती, तो एक बार प्लीज अपना नाम मुझे जरूर भेजिएगा। एंड खान साहब ने जो है ना, अवीज खान जी ने जो है एक ऑडियो नोट भेजा है, मैं बिल्कुल अभी सुनूंगी एंड थोड़ी देर बाद हम इन ऑडियो नोट्स में क्या था वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक मैसेज नहीं किया 3311063 पर जल्दी जल्दी से मुझे मैसेज कर दो और आंसर बता दो कि यार क्या है ये गाना जो है, कौन सी मूवी का है, इस गाने का नाम क्या है। तब तक जो है लैम्बो कार वाला गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स में, कूल सॉन्ग ऑफ द आवर है, सो इसे जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Ready? To learn?
2: Yes.
1: To play?
2: Absolutely.
1: To grow?
2: With Maserati.
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस Maserati फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ।
2: मिल्क, चीज, योगर्ट, लवली एग्स।
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक Maserati है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
4: Grow with Maserati, freshly from Qatar.
5: This is Amira Dastoor on Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.

0: अरे रानी का तो पता नहीं, पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं। यस दोहा, गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह, आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा।
1: सितंबर 24th एट हॉलीडे इन दोहा। रेट्रो वाइब्स, प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज।
0: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट्स आज ही बुक करें। धरोहर मिस मत करना।
2: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
4: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
5: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

यार टिकट तो हॉलीवुड नहीं मिल रहा है तो यार टिकट तो बॉलीवुड ही दे दो, और अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो टिकट टू घर दे दो यार, घर जाने का मन हो रहा है यार काफी। वेलकम जी 106.3 हूँ आपकी कसूसन शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जो आप पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा एंड रिस्पांसिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया है। अब देखिए यार, मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि यार इंडियन रियलिटी टीवी शोज को मैं काफी मिस कर रही हूँ, यानी वो जो ड्रामा होता है ना टीवी पर वो जो है रियल लाइफ में अगर हो जाए तो मजा आए, वैसे सिंगर्स मिल जाए, वैसा जो है टैलेंट मिल जाए, या फिर बस वैसे जो है करेज वाले एंटरटेनिंग लोग मिल जाए। एंड देखो यार, अगर कुछ और मांगती ना वो भी मिल जाता, क्योंकि मेरे जो लिसनर्स हैं वो एक से बढ़कर एक हैं। सो कनीज इब्राहिम जी ने जो है मुझे गाते हुए मेरे क्वेश्चन का आंसर भेजा है एंड इट इज रियली रियली नाइस। वैसे सबके जो है आंसर्स पढ़ने से पहले एंड आपको आंसर बताने से पहले जो है एक बार और गाना सुनाना चाहती हूँ मैं आपको, चुटकी भर सॉन्ग वाला, जिसपे आज का जो है क्वेश्चन बेस्ड था। आपको मुझे ये बताना था कि यार ये जो गाना है इसका नाम क्या है एंड ये कौन सी मूवी से है। सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर जो है सुनो ध्यान से।

जैसे ही जहां पर खत्म किया बस वहीं से जो है आंसर मिल जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे से आंसर दिए हैं, बिल्कुल सही सही से आंसर दिए हैं। सो सबसे पहले तो अबीद अली जी ने जो है हमें कहा है, इन्होंने आंसर नहीं दिया है, ओके। उसके बाद सुनील शेट्टी जी आ चुके हैं हमारे चैट पे, यस, बस इसी का इंतजार था, सुनील शेट्टी जी आ गए हैं। मैं कहना चाहती हूँ सुनील शेट्टी जी, आपका नाम पढ़ने के बाद मुझे बस एक ही थॉट आया था, ये धरती मेरी माँ है। लेकिन कोई बात नहीं, जो बॉलीवुड ओजीज हैं वो मेरा ये फ्रेंड समझ जाएंगे। वैसे इन्होंने जो है आंसर बिल्कुल सही दिया है, तो कंग्रेचुलेशन। रवि जी ने जो है वो बिल्कुल सही आंसर दिया है। उसके बाद बिल्कुल सही आंसर जो है हमें आ चुका है अस्मा जी से, सो थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद अतीक जी ने जो है वो भी हमें मैसेज किया है एंड उन्होंने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, सो थैंक यू सो मच। एंड बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग आंसर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा मुझे मजा आता है जब आप लोगों के आंसर आ जाते हैं एंड ओजी बॉलीवुड फैंस जो है वो मुझे दिख जाते हैं। सो आंसर बता देती हूँ, आंसर है सुनूना सुनूना फ्रॉम द मूवी चलते चलते। एंड ये ना मेरा वन ऑफ द फेवरेट ट्रैक्स है एंड जब भी मुझे लो फील होता है तो मैं ये गाना जरूर सुनती हूँ। और पता नहीं क्यों इस गाने में एक अलग सी वाइब है, ऐसा लगता है यार कोई आपसे पर्सनली ना बैठ के आपसे बातें कर रहा है कि यार चलो चाय पीते हुए जो है सनसेट देखते हुए आओ बताओ, मैं अपना बताता हूँ तुम अपना बताओ। सो फिलहाल ऐसे और गाने जो है वो हम डिस्कवर करते रहेंगे बेसिकली, लेकिन उससे पहले आपको मैं अपना हीरो बोलते हुए जो है एक अमेजिंग वाला गाना चला रही हूँ, तू मेरा हीरो। सो वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए एंड अपने अपने पसंदीदा मर्द को ये गाना जो है डेडिकेट कर दीजिए। वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जी गोविंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: यू घर का क्या हाल बना रखा है? तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते, कहाँ है सब?
2: कारपेट के नीचे, सीलिंग के जालों में और दीवार पर।
1: क्या कॉकरोचेस, मकड़ी, धूल और जाले? अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर।
2: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज, प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ, और हाँ, मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है।
3: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
5: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

करंट तो देखो लग जाता है जब हम देखते हैं ब्रेन रॉट मूवीज को, लेकिन आप मुझे बताइए ये ब्रेन रॉट मूवीज के बिना बॉलीवुड है क्या? मतलब आप एक बात बताइए, रोमांटिक मूवीज आपको बहुत अच्छी लगती है, एक्शन मूवीज आपको और अच्छी लगती है, लेकिन बिना ब्रेन रॉट मूवीज के जग सुना सुना लगे। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए यार, आज ही ना हम सब जब साथ में बैठे हुए थे एंड लंच टेबल पर डिस्कशन चल रहा था, सो आज का टॉपिक था यार कि बॉलीवुड में कितनी सारी ऐसी ब्रेन रॉट मूवीज हैं जो जब रिलीज हुई थी तब उन्हें काफी यू नो क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब उन्हीं मूवीज को कल्ट मूवी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं 30 मार खां की, सो जब 30 मार खां लॉन्च हुई थी एंड उसके बाद भी काफी सालों तक 30 मार खां को एक टॉर्चर मूवी की तरह जो है ट्रीट किया जाता था कि भाई अगर किसी को टॉर्चर करना है तो ये मूवी दिखा दो एंड वो तो टॉर्चर हो जाएगा। एंड उसके बाद भी फरह खान ने खुद ये मजाक अपने ऊपर लेते हुए अपनी जो आगे की कुछ मूवीज थी उनमें ये चीज दिखाई कि यार 30 मार खां जो है वो कितनी ज्यादा बोरिंग मूवी है, कितनी ज्यादा जो है अनोइंग मूवी है। लेकिन आज के टाइम पर 30 मार खां को कितनी ज्यादा कल्ट मूवी कहा जाता है, इतने सारे मीम रेफरेंस, म्यूजिक, अमेजिंग एक्टिंग एंड ऑफ कोर्स कैटरीना कैफ एंड अक्षय खन्ना, दो अमेजिंग स्टार्स जो है हमें इस मूवी में मिले थे जिन्हें हम उस टाइम पर उतना यू नो भाव नहीं दे रहे थे बेसिकली। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मूवीज जो शायद अपने वक्त में अच्छा काम नहीं करती हैं उन्हें हम वैल्यू नहीं करते, लेकिन बाद में वो जब जो जब आप उससे ज़रा ज़्यादा बुरा कॉन्टेंट देख लेते हो ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार वो वाली मूवी बहुत अच्छी थी। एक ऐसी ही मूवी की अगर मैं बात करूँ ना, सो वो है रावण, शाहरुख खान की मूवी थी एंड मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी थी। आपने उस मूवी का गाना जो है छमक छलो सुना ही होगा एंड उसमें बहुत अमेजिंग जो है वो गाने हैं, टेक्नोलॉजी बेसिकली बहुत अच्छी यूज़ करी गई है, जो यू नो गेमिंग आज के टाइम पर हो रही है वो उस टाइम पर उन्होंने इमेजिन करके बॉलीवुड की मूवी में दिखा दिया था एंड इट वॉज अमेजिंग। दिस मूवी वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम एंड मुझे लगता है कि अगर अभी तक आपने रावण नहीं देखी है तो एक बार आपको जाके जरूर देखनी चाहिए। बाकी ऐसी बहुत सारी अमेजिंग मूवीज हैं जो शायद आपने नहीं देखी है या आपसे मिस हो गई होगी, उसकी पूरी लिस्ट जो है मैं आपको दे दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताइए 3311063 पर मैसेज करके, बाकी आगे जो है बातचीत हम ऐसी ही मूवीज पर जारी भी रख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। सो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी मूवीज पर बात करें, आपके पास ऐसी कोई मूवी है सिलेक्टेड जो आपकी बहुत फेवरेट है, सो 3311063 पर आकर मुझे मैसेज कर दीजिए, उस पर बातचीत करते हैं। टू वे कम्युनिकेशन होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना। फिलहाल ऑल फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द आर आपकी रेडियो सेट्स पर, तो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर कॉकटेल 2 का एक गाना जो है एंजॉय कीजिए आपकी रेडियो सेट्स पर, और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Biryani belly, bye bye. Flabs instead of abs, not for long. Falcon Fitness is landing in Al Rayyan, September 18th, 7 PM, and bringing the star power: Jay Surya, Esther Anil, Shamna Kasim, producers C.R. Salim and Rajesh Krishna. Al Rayyan, ready to get ribbed. Falcon Fitness, spread your wings.
2: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
3: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
2: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
3: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
2: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
4: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। द कतर टॉक्स इज बैक विद इट्स 21st एडिशन ऑन द हंट फॉर कतर्स नेक्स्ट चैंपियन स्पीकर। 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd सितंबर तक ऑन www.thekatartalks.com पर। ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतर। ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026। द कतर टॉक्स 2026. Communicate, connect and conquer.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: آپ سن رہے ہیں قطر کا نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ریڈیو اولیو 106.3 ایف ایم. بنداس
2: ٹائم چیک. Brought to you by Danat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
3: तो जी, आपको वक्त बताने का वक्त हो चला. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 7:13, दैट इज 7:13. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
4: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ. विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ.
5: Hi, this is Kailash Kher, and you are listening to Qatar's first Hindi radio station, Radio Olive.
6: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ऑलिव पर. जियो बिंदास,
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: देखो जी, अब तो 17-18 सालों में ही रिटायरमेंट का मन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो काम किए ही जा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए अभी एनी टाइम सून हमारे रिटायरमेंट का कोई भी प्लान नहीं है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफेयर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए यार, अब जो है मतलब मुझे अभी काम करते हुए 5 या 6 साल ही हुए हैं, एंड उसमें भी मैंने प्रॉपरली काम सिर्फ 3 साल किया है, उससे पहले इंटर्नशिप, ट्रेनिंग एंड यू नो इनिशियली जो आप जॉब करते हो वो होता है। सो मेजरली कॉर्पोरेट में मुझे अभी 3 साल ही हुआ है, एंड आप 22-23 साल की उम्र में क्या उम्मीद करते हो। लेकिन फिर भी मेरा मन ये हो गया है कि यार रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, अर्ली रिटायरमेंट ले लूंगी मैं ना, बहुत सारे पैसे ना अभी कमा कर और फिर उसको सेव कर लूंगी एंड फिर रिटायरमेंट ले लूंगी। मैं अभी से अपने रिटायरमेंट की सोचने लग गई हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि यार एनी टाइम सून हम तो कोई रिटायरमेंट का सोच ही नहीं रहे, एंड इनके पता ये कहने से मुझे अच्छा भी लग रहा है क्योंकि ये है बिग बी अमिताभ बच्चन जी। हाँ, रिसेंटली अमिताभ बच्चन जी से पूछा गया कि यार आप रिटायरमेंट कब लोगे, आप 83 ईयर्स के हो गए हो, एंड अमिताभ बच्चन जी का ये कहना था कि यार अभी तो देखो, अभी तो मेरे अच्छा काम करने की उम्र है, अभी तो मैंने अच्छा काम करना शुरू किया है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं रिटायर होने वाला हूँ। ब्रो, ये इंसान तब से काम कर रहा है जब मेरे दादा कॉलेज में थे, फिर मेरे पापा ने इनकी मूवीज से रिलेट किया, फिर अब मैं इनकी मूवीज से रिलेट कर रही हूँ, एंड हमारी ऐसी आगे आने वाली बहुत सारी जनरेशन जो है वो मुझे लगता है अमिताभ बच्चन से इंस्पायर होने वाली है, एंड ये एनी टाइम सून क्या मुझे नहीं लगता कि ये रिटायरमेंट लेने वाले हैं, इन्हें रिटायरमेंट लेना भी चाहिए बिकॉज इनकी मूवीज जो है वो हमारे ऑक्सीजन की वजह बन रही है। फिलहाल जबरदस्त हिट गाना जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय कीजिए वरुण धवन का डांस। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

अजनबी तो अब हम नहीं रहे क्योंकि अब हमारी दोस्ती जो है वो गहरी हो चुकी है। वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश अंशु, आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पांसिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए यार, इस दोस्ती को और ज्यादा गहरी दोस्ती में हम तब जो है बना पाएंगे और ज्यादा गहरी दोस्ती में कन्वर्ट कर पाएंगे जब हम जो है मिलकर अमेजिंग वाले गेम्स खेलेंगे, फन करेंगे एंड मस्ती जो है वो अनलिमिटेड होगी। एंड देखिए, इसके लिए अगर आप अपने ऑफिस में रेडियो ऑलिव की टीम को इनवाइट करेंगे तो फिर मजा ही आ जाएगा। तो अगर आप एक बिजनेस ओनर है, मैनेजर है, एचआर है, तो अपनी टीम को रीएनर्जाइज करने के लिए, रीजुबिनेट करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है रेडियो ऑलिव की टीम को और रेडियो ऑलिव के आरजेस को अपनी कंपनी में, अपने ऑफिस में जो है, अपनी वर्क स्पेस में जो है इनवाइट करें। एंड वहां पर हम बहुत सारे गेम्स खिलाएंगे, फन कॉन्वर्सेशंस करेंगे, मस्ती करेंगे एंड फॉर श्योर आपको जो है एक नई एनर्जी देंगे। सो 3311063 पर जल्दी से मुझे जो है मैसेज कर दीजिए HL लिखकर। HL मतलब हैप्पीनेस लाउंज। हैप्पीनेस लाउंज हमारी एक्टिविटी का नाम है जो हम करेंगे आपके ऑफिस में, आपकी वर्क स्पेस में, एंड आपकी लाइफ को खुशियों से भर देंगे। और अगर आपको आपकी टीम का फोकस चाहिए और उनको एंटरटेन करना है तो देखिए उनके लिए तो आप इतना कर ही सकते हैं। सो रॉक ऑन जो है आपके टीम की एनर्जी हो जाए, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है हैप्पीनेस लाउंज जो है वो लेकर रेडियो ऑलिव की टीम आपके ऑफिस में आए। तो जल्दी से मैसेज करो 3311063 पर। फिलहाल रॉक ऑन मूवी का टाइटल ट्रैक फरहान अख्तर की आवाज में आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास।
2: यू घर का क्या हाल बना रखा है? तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते, कहाँ है सब?
3: कारपेट के नीचे, सीलिंग के जारों में और दीवार पर।
2: क्या कॉकरोचेस, मकड़ी, धूल और जाले? अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर।
3: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज, प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ, और हाँ, मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है।
4: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास।
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

नाम छेड़ खानिया एंड कार्तिक आर्यन अपना चार्म जो है वो बिखेरते हुए इस गाने में दिखे हैं एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि करण जौहर जी ने इस गाने में जो है कोशिश की है शावा शावा को जो है रिक्रिएट करने की, मतलब बीच में एक स्लो जो है पेस्ड सॉन्ग इन्होंने ऐड किया एक फास्ट पेस्ड गाने में, तो थोड़ा थोड़ा लगा बट कार्तिक आर्यन कभी शाहरुख खान की जगह नहीं ले पाएंगे। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिशन शो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ जबरदस्त इवनिंग जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए यार, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स ने जो है एक एक रिमाइंडर आप लोगों को भेजा है कि जो आपके फोन में मेट्रैश ऐप है उसे आप कई तरीकों से यूज कर सकते हैं, सिर्फ वो आपका एक आइडेंटिटी का जो है आप उसमें आईडी कार्ड ही अपना नहीं कैरी कर रहे हैं, उसमें आप बहुत सारी चीजें रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर अनऑथोराइज्ड जो है किसी ने छुट्टी ली है या फिर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का कोई केस है सो आप उस पर रिपोर्ट कर सकते हो। सो एक बार अपनी मेट्रैश पे जाकर जरूर देखो कि ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो आपको मिल सकती हैं। बेसिकली जो लोग नए आए हैं कतर में उन्हें अभी तक जो है उतना आइडिया नहीं हुआ होगा मेट्रैश ऐप का, सो एक बार जरूर से जो है जाकर स्पेसिफिकेशन पढ़ो। MOI की वेबसाइट पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, सो जाओ एक बार पढ़ो एंड मुझे ऐसा लगता है कि अपने सर्विसेज के बारे में आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको पता चलेंगी, आपकी राइट्स आपको पता चलेंगे। फिलहाल जो है आपको ये पता चलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर कॉकटेल 2 मूवी से, सो इसे वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जी बिंदास।

0: listening to Radio Colliv 106.3 FM.
1: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर। ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार। ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026। The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.

0: copiar.
1: तो जी देखिए, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग गाने तो हम आपको सुना ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अमेजिंग बातचीत जो है मैं अपने पेरेंट्स से भी करती रहती हूँ बीच बीच में। अब देखो, कल मैंने आपको आके बताया था कि जेंजी डिकोडेड में एक डॉल्फिन वाला इमोजी है जो आजकल जेंजी यूज कर रहे हैं अपने हंसने वाले इमोजी की जगह। एंड मेरी मम्मी ने कल से, जब से ये बात सुनी है तब से वो हर बात पे जो है डॉल्फिन वाला इमोजी भेज रही है। मम्मी प्लीज वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसोशन, जो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पांसिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया है। अब देखिए यार, आज के जेन जी डिकोडेड में भी वैसे तो मैं आपको बहुत ही अमेजिंग चीज बताने वाली थी, लेकिन बेसिक्स से शुरू करिए। ये जो है किसी ने मुझे मैसेज कर दिया, तो हम जो है क्लॉकेट पे पहुंच चुके हैं। तो मेरी मम्मी, अगर आप सुन रहे हो मुझे, तो प्लीज क्लॉकेट का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि आप ऑलरेडी कर रहे हो। आजकल जो है जेंजीज अपनी दो उंगलियों को, अंगूठे को और अपनी इंडेक्स फिंगर को ऐसे बीच, मतलब ऐसे आपको दिख थोड़ी रहा है मैं क्या कर रही हूँ। अपने अंगूठे और अपनी फिंगर को जो है ऐसे क्लैप करते हैं साथ में, एंड उसे कहते हैं क्लॉकेट। इसका मतलब होता है अप्रिसिएशन, वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड मैं और मेरी मम्मी आजकल बाय नहीं करते हैं, एक दूसरे को क्लॉकेट करते हैं। बाय बाय की जगह जो है हम दो उंगलियों से तालियां बजाते हैं और एक दूसरे को बाय कर रहे हैं। सो देखिए, मेरी मम्मी जिस स्पीड से सीख रही है, इस स्पीड से अगर आप लोग भी सीखेंगे तो आप भी जेंजीज के बीच में अपनी जगह बना पाएंगे। मेरी मम्मी एक टीचर है, एंड मेरी मम्मा जो है और लोगों को सिखाती है, लेकिन इनकी सीखने की शक्ति कितनी ज्यादा है ये मुझे तब समझ आया जब कल उन्होंने डॉल्फिन इमोजी जो है वो यूज करना शुरू किया। एंड हर रोज कॉल पे बाय बोलते वक्त हम एक दूसरे को क्लॉक इट करते हैं, बाय बाय हम जा रहे हैं, ऐसा करते हैं। सो मेरी मम्मी के नाम जो है मुझे ऐसा लगता है कि एक आध अवार्ड तो दे ही देना चाहिए, लेकिन मेरी मम्मी है, एक अवार्ड क्या मिलेगा उन्हें। अवार्ड जो है अगर उनके पास गया, मतलब अवार्ड को जो है मेरी मम्मी मिली है। समझ रहे हो आप कि मेरी मम्मी जो है कितनी बढ़िया है, कितनी अच्छी है। बस इसी बात पे मेरी मम्मी के लिए जो है तालियों वाला इमोजी या क्लॉकेट वाला इमोजी जो है या डॉल्फिन वाला इमोजी जो है वो भेज दीजिए 3311063 पर। देखिए, मेरी मम्मी के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। वैसे अभी जो है बेबी डू डाई डू से एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जी बिंदास।
2: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा आम शक्ति।

0: Time check. Brought to you by Nanat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: हाँ जी, तो आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 8:09, that is 8:09. Stay tuned, Jio with us.
2: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
3: Hi Radio Olive 106.3 listeners, this is Ranveer Singh. Stay tuned.
4: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ऑलिव पर. जियो बिंदास,
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: तम्मा तम्मा का क्या है यार, आप प्यार से दोगे तो हम रख लेंगे। बस देखो तम्मा तम्मा जो है उसमें चॉकलेट बहुत सारा होना चाहिए, सो चॉकलेट वाला तम्मा तम्मा यानी चॉकलेट वाला केक जो है वो मैं खा सकती हूँ, आप दे दीजिएगा। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल एफएम, मैं हूँ आपकी कसुसन, शो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ जबरदस्त इवनिंग, जो हमारा आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया है। अब देखिए यार, चॉकलेट केक, चॉकलेट फज, यू नो दुनिया की जितनी भी फैट वाली चीजें हैं, कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें हैं, उन सबके में बात करने में, उन सबके बारे में बात करने में बहुत इंटरेस्टेड रहती हूँ, एंड पता नहीं क्यों मेरा दिल ललचा सा जाता है जब ऐसे किसी चीज की बात आती है। लेकिन लेकिन लेकिन इसको मेंटेन रखने का एक बढ़िया चीज है कि आप ये चीजें खाएं लेकिन अपने जो स्टेप्स हैं वो पूरे करें, 10,000 स्टेप्स, 4,000 स्टेप्स, जितना भी आपने टारगेट रखा है वो आप पूरा करें, एंड अपनी जो है टारगेट से हमेशा थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश करें, एंड टारगेट हमेशा इतना रखें जो आप कर सकें। शुरू में जो है थोड़ा कम रखिए फिर बढ़ाइए, जैसे पहले 4,000 स्टेप, फिर 6,000 स्टेप, फिर 1,000 स्टेप, तो ऐसे ऐसे करेंगे ना तो बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो इंसान है मेरी तरह जो वॉक करते करते बोर हो जाता है, इस वजह से अपने 10,000 स्टेप्स जो है वो पूरे नहीं कर पाते, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। मैंने जो है ऐसे चार तरीके पता लगा लिए हैं जिनको आप यूज कर सकते हो अगर आप वॉक करते करते बोर हो जाते हो। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप जो है फोटो बिंगो जो है वो खेलो, यानी आप घर से ये सोच के निकलो कि आज जो है मुझे येल्लो चीजें जो है वो देखनी है, एंड मुझे बेसिकली या फिर अलग टाइप की कार देखनी, मतलब बेसिकली कुछ भी एक टॉपिक जो है वो चुन लो, एंड उस पर आपको 30 फोटोज जो है वो खींच के ही निकलना है। बेसिकली अगर आपने येलो चीजें सोच ली हैं तो आपको 30 अलग अलग टाइप की येलो चीजें जो है उनकी फोटो लिए बिना बाहर, मतलब वापस घर जाना ही नहीं है। इससे जो है आपके स्टेप्स जो है वो पूरे होंगे एंड आप एक्सप्लोर कर पाओगे। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि वॉक करते टाइम एक जो है मोटिवेशन की काफी कमी हो जाती है, सो जब आप चल रहे हैं तो लैंडमार्क्स बना लीजिए कि कोई वो कैफे हो सकता है, कोई जो है किराना स्टोर हो सकता है, कोई सुपरमार्केट हो सकता है, या कोई एरिया हो सकता है बेसिकली, तो वो आपने पार कर लिया, तो ऐसे आप अलग अलग लेवल्स जो है वो पार कर लोगे। तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे जो है सिर्फ आपके स्टेप्स कंप्लीट नहीं होंगे, इससे आपका यू नो इमेजिनेशन भी बढ़ेगा, आपके आसपास की अवेयरनेस बेसिकली बढ़ेगी। सो आप जब भी वॉक के लिए निकले आपको हर रोज एक नई चीज डिस्कवर करनी है, एक नई जगह हो सकती है या किसी का यू नो कोई बिलबोर्ड हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है। सपोज मैंने वॉक करना शुरू किया तो पहले दिन मैंने एक ऐसा कैफे देखा जिसपे मेरी इससे पहले कभी नजर नहीं जो है गई थी, या फिर एक ऐसा बिलबोर्ड देख लिया जिसपे मेरी कभी नजर नहीं गई थी, या आप थोड़ा और आगे गए एंड आपने कुछ ऐसी चीजें एक्सप्लोर की जो आपको नहीं पता था कि इस एरिया में जो है रहती है या है ऑलरेडी। सो ये एक अच्छा तरीका है। एंड उसके बाद फोर्थ एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका है कि आप जो है गाने अगर सुन के वॉक करते हैं, तो जब भी कोई सिंगर जो है सिंगर अकेले गा रहा है तो आप स्लो पेस पे वॉक करें, एंड जैसे ही कोरस आए या म्यूजिक आए तो आप फास्ट वॉक करें। ऐसा अपने हिसाब से आप क्यूरेट कर सकते हैं। सो गाने में ऑटोमेटिकली वेरिएशन आएंगे, अलग अलग गानों में अलग अलग वेरिएशन आएंगे, एंड आपका वॉकिंग पैटर्न जो है वो अलग अलग तरीके से हो जाएगा। सो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपनी वॉकिंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे तरीके जो है वो अवेलेबल हैं, ये तरीके भी मैंने इंस्टाग्राम से ही ढूंढे हैं। सो अगर आपको भी ऐसा कोई तरीका मिले तो मुझे रील फॉरवर्ड कर देना, radioolive.qa पर जो है आप ये रील्स जो है वो मुझे फॉरवर्ड कर सकते हो। बाकी 3311063 पर आकर भी मुझे बता सकते हो, लिंक भी भेज सकते हो, और अगर कोई आपने तरीका निकाला है तो वो भी बता दीजिएगा। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आरआर आपके रेडियो सेट पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए। गाने का नाम है तितलियां, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास। कूल सॉन्ग
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है। Cool song.

0: Manila's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Gio Bindas.
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Nanatal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhor.
2: Baatein nahi, energy ka booster mil raha hai. Kyunki chal raha hai, zabardast evening. सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
4: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
5: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

मैं जब भी अपना वापस घर जाना इमेजिन करती हूँ ना, मुझे लगता है इसी गाने पे मेरा वेलकम करेंगे मेरे घर वाले कि महफिल यूं ही सजती रहे। बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़े ख्वाब, अभी तो दूर दूर तक मेरा घर जाना मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वेलकम 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कंसेशन शो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया है। अब देखिए यार, आज मैं कैलेंडर देखकर यही सोच रही थी कि वेंसडे तो हो गया है, अब बस कल जो है थर्सडे आएगा एंड थर्सडे की शाम से हमें जो है इस बात की स्ट्रेस जो है इस बात का स्ट्रेस होने लगेगा, इस बात की टेंशन होने लगेगी कि क्या फ्राइडे को कहाँ जाया जाए। तो देखिए यार, मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिसिपैलिटी ने जो है इनवाइट किया है फैमिलीज को, रेसिडेंट्स को फ्लोटिंग फ्लोटीज फेस्टिवल के लिए। मेरा पहली बार है ठीक है कतर में, मुझे नहीं पता है कि ये क्या होता है, बट फ्लोटीज फेस्टिवल बहुत ही फन चीज जो है मुझे लग रही है एंड ये कम्युनिटी इवेंट होने वाला है एंड ये होगा 974 बीच पे इस सितंबर 18 को यानी इस फ्राइडे को। तो देखिए बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग चीजें इस फ्राइडे को हो रही है जिस पर हम बातें कल करेंगे डिटेल में अपने शो लाइफ मस्ते पे। हाँ जी, कल जो है मैं लाइफ मस्ते शो में आपको एंटरटेन करने के लिए आऊंगी सुबह 10 बजे से लेकर शाम को मतलब दोपहर में 1 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर में 1 बजे तक। ये वाली मेरी बचपन से ही थोड़ी प्रॉब्लम है, अभी मेरी मम्मी मुझे सुन रही होगी तो मैसेज करेगी कि तुम्हारा एएम पीएम वाला कंफ्यूजन अभी तक दूर नहीं हुआ, इतनी बड़ी हो गई हो। देखो यार, वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर एंड मम्मी पे आज बहुत सारे जोक हो गए हैं तो आज हमारी शामत है। फिलहाल बहुत ही अमेजिंग वाला गाना बिल्लू मूवी से आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास। I'm a

0: ready?
1: Ready!
0: To learn?
1: Yes!
0: To play?
1: Absolutely!
0: To grow?
1: With Maserati!
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लेबनी एग्स
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
3: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
6: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: से बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।
1: तारे उसके हाथ में होने ही चाहिए, जुगनू उसके साथ में सोने ही चाहिए।

उर्दू की अलग टाइप की डिक्शनरी जो है इस गाने को लिखने के लिए इस्तेमाल की गई है, तो अगर कुछ वर्ड समझ ना आए तो आपकी वोकैबुलरी जो है वो खराब नहीं है, इनके जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वेलकम 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश। आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे थे जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा एंड रिस्पॉन्सिबल चाहिए मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा था। लेकिन अब वक्त हो गया है मेरे यहाँ से जाने का। कल मुलाकात होगी हमारे सुबह वाले शो में। हाँ जी, सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको एंटरटेन करने के लिए शो लाइफ मस्त है मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। तो यार उस वक्त पे भी जितना प्यार इस वक्त दिया है उतना प्यार देना, एंड कल सिमरन जब आ जाए तो उन्हें कहना कि कशिश ने आपकी कमी महसूस नहीं होने दी। फिलहाल ऑलिफर सॉन्ग ऑफ द आर के साथ आपको मैं जो है छोड़े जा रही हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और जाते जाते वही कहूंगी जो हर रोज कहती हूँ कि खाना खाते रहना, पानी पीते रहना, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाना, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना, और रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल और सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को जाकर फॉलो कर लेना, आपकी कशिश को मिस करते रहना। और बाकी अमेजिंग वाले गाने तो आपके लिए आ ही रहे, इंजॉय करते रहो और कहते रहो जियो बिंदास, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।

0: ये है मिडनाइट लाउंज
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Yeah, midnight love.
2: ये है midnight love.

0: नाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3।

0: association with
1: Nesto Hypermarket, now open at Old Passport Office, Karafa.
2: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. जियो
1: बिंदास. ये है मिडनाइट लाउंज.
2: ये है मिडनाइट लाउंज.

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

ponte en number one radio station. Radio Olive 106.3 FM.

0: ओलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम.
3: You are listening to Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindas.

0: हर बंदी के मुंह से निकले चीख।
1: हाथ पकड़ पर दिल में लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।